पर दोस्तों जीना तो वो है जब हम दूसरे के लिए जीते हैं, किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं। आइए सुनते हैं मन्ना डे की आवाज़ में फिल्म बादल से ये गीत।

आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म तोहफा से अभी आपने गीत सुना। रास्ते चाहे जैसे भी हों, अपनी मंजिल मस्त गगन है। रास्ते चाहे जैसे भी हों, अपनी मंजिल मस्त गगन है। ना कल की फिक्र ना आज का मलाल, दिल में प्यार और होंठों पर एक तरन्नुम है। आइए सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म छोटी बहन से ये गीत।

दोस्तों, जो पल हमारे पास आज हैं उन पलों में जीना सीखिए, उन पलों का एंजॉय कीजिए, क्योंकि वो पल फिर आने वाले नहीं हैं। आइए सुनते हैं गोलमाल फिल्म से किशोर कुमार की आवाज़ में ये गीत।

दोस्तों, जिन पलों के साथ हम आपस में जुड़े हुए थे वो पल भी अब जा रहे हैं, और इसी के साथ ही अब भोर सुहानी से अपनी दोस्त अर्चना को अनुमति दीजिए और आगे भी इसी तरह हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। नमस्कार।

0: ఈ నారాయణబోతో జీవితం రంగులమయం. నిలయంలో సమయం 6 గంటలు కావస్తుంది. మరికొద్దిసేపట్లో న్యూస్ హెడ్లైన్స్ వింటారు.
1: ఆకాశవాణి సమాచార్ కి సాత్ మే జయా భారతి. लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित हो गया है. विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक पेश किया था. उन्होंने कहा कि इस विधेयक से न्यायिक क्षेत्र में चल रही सुधार प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव आएगा. भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि पार्टी 3 विधानसभा उपचुनाव में मिले जनादेश को स्वीकार करती है. सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने गुजरात के मांजलपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता पर भाजपा पर विश्वास बनाए रखने का आभार व्यक्त किया. श्री नवीन ने कहा कि पार्टी बांकीपुर और दतिया में के चुनाव परिणामों का गहन विश्लेषण करेगी. भाजपा के सत्येंद्र पटेल ने वडोदरा जिले की मांजलपुर विधानसभा सीट पर जीत हासिल की है, जबकि जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत कुमार ने बिहार की बांकीपुर और कांग्रेस के घनश्याम सिंह ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर जीत दर्ज की. विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल नई दिल्ली में उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री बख्तियार सैदो से बातचीत की. दोनों मंत्रियों ने ऊर्जा, अवसंरचना, व्यापार, रक्षा, शिक्षा और संस्कृति पर विशेष ध्यान देते हुए रणनीतिक साझेदारी की विस्तृत समीक्षा की. सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने बताया कि उन्होंने प्रमुख क्षेत्रीय चुनौतियों पर भी चर्चा की और भारत उज्बेकिस्तान बहुपक्षीय सहयोग के विस्तार पर विचार विमर्श किया. श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों, विशेष रूप से आतंकवाद, उग्रवाद और मादक पदार्थों की तस्करी के मामलों में एक समान विचार हैं. ब्रिक्स भ्रष्टाचार रोधी कार्य समूह और संपत्ति वसूली पर ब्रिक्स विशेषज्ञ नेटवर्क की दूसरी बैठक आज हैदराबाद में शुरू होगी. बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ साथ वरिष्ठ नीति निर्माताओं, विशेषज्ञों, कार्यपालकों और भ्रष्टाचार विरोधी तथा कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधियों की भागीदारी होगी. सदस्य संपत्ति वसूली के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने, सीमा पार भ्रष्टाचार से निपटने और शासन में पारदर्शिता तथा जवाबदेही बढ़ाने पर भी विचार विमर्श करेंगे. भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की द्विमासिक बैठक कल शुरू हुई. आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा बुधवार को नीति वक्तव्य जारी कर सकते हैं. भारतीय अर्थव्यवस्था ने मजबूती दिखाई है, लेकिन वैश्विक अनिश्चितताओं और मुद्रास्फीति संबंधी चिंताओं के चलते आरबीआई के सतर्क रुख अपनाते हुए ब्याज दरों में कोई बदलाव न करने की संभावना है. संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने कल नई दिल्ली में मेटा के अधिकारियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेसबुक वीडियो को कुछ समय के लिए हटाए जाने के संबंध में मुलाकात की. बैठक के बाद भाजपा सांसद और समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने कहा कि समिति ने मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुगरबर्ग को इसके लिए माफी मांगने को कहा है. यदि वे ऐसा नहीं करते तो उनसे धारा 79 के अंतर्गत दी गई सेफ हार्बर प्रोटेक्शन वापस लिया जाना चाहिए. भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने डाबर इंडिया को शहद, गाय का घी और खाद्य तेल जैसे कई उत्पादों को 100% के दावे के साथ बेचने से प्रतिबंधित कर दिया है, क्योंकि इस तरह का लेबल लगाना कानून के खिलाफ है. प्राधिकरण ने सोशल मीडिया पर सूचित किया है कि इन उत्पादों में शहद, सेब का सिरका, शुद्ध नारियल तेल, तिल का तेल, गाय का घी, नारियल पानी, नारियल का दूध और अन्य ऐसे उत्पाद शामिल हैं. अमेरिका के 25 राज्यों ने ट्रंप प्रशासन पर नए सीमा शुल्क को लेकर मुकदमा दायर किया है. राज्यों ने इसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा फरवरी में रद्द किए गए आयात शुल्कों की जगह नए शुल्क लगाने का बहाना बताया है. पिछले महीने अमेरिका ने 59 देशों और यूरोपीय संघ पर दोहरे अंकों का शुल्क यह आरोप लगाते हुए लगाया था कि उन्होंने जबरन श्रम से उत्पादित आयात पर रोक लगाने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए थे. जम्मू कश्मीर सरकार प्रवासी परिवारों की सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से लगभग 50,000 प्रवासी परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के डेटाबेस में एकीकृत कर रही है. एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि सरकार प्रवासी राशन कार्ड को साधारण खाद्य पात्रता कार्ड की जगह व्यापक सामाजिक कल्याण लाभ के तौर पर परिवर्तित कर रही है. इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ईरानी चाय,
1: बन मस्का,
0: हैदराबादी बिरयानी,
1: टंग दी कबाब,
0: कुर्बानी का मीठा,
1: शहदूद मलाई।
0: हैदराबाद इज अ ग्रैंड बफे
1: एंड एवरी डिश हैज अ स्टोरी वेटिंग टू बी टोल्ड।
0: एग्जैक्टली, दैट्स व्हाई जश्न ए हैदराबाद इज योर आफ्टरनून ट्रीट
1: फ्रॉम 2 to 3 PM एवरी डे ऑन FM रेनबो 101.9।
0: इट्स नॉट जस्ट फूड,
1: इट्स कल्चर, हिस्ट्री एंड फ्लेवर रोल्ड इनटू वन।
0: जश्न ए हैदराबाद।

रंग दे बसंती फ्रॉम द फिल्म रंग दे बसंती। कुछ गाने सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होते, दे बिकम एन इमोशन। रंग दे बसंती इज वन सच सॉन्ग। ये सॉन्ग के एनर्जी, इट्स पावरफुल बीट्स और उसके लिरिक्स हर बार एक नया जोश देते ही रहते। इवन ईयर्स आफ्टर इट्स रिलीज, दिस सॉन्ग कंटिन्यूज टू इंस्पायर एंड इग्नाइट द स्पार्क विद इन अस। Also, I would like to take a moment to appreciate the genius of A.R. Rahman, like how he brilliantly contrasted Daler Mehndi's powerful vocals with Chitra's soothing voice, right? Like the second half of the song. So, stay tuned because aur ek zabardast gaane ke liye aapke liye lined up hai.

That was Rolling Stones' Give Me Shelter. तो ओबामा के बारे में बात करने हैं तो पहली याद आती है उनकी पावरफुल स्पीचेस. दुनिया भर में ओबामा साहब का स्पीचेस करोड़ों लोगों को इंस्पायर किया है. आई कंसीडर ओबामा's विक्ट्री स्पीच इन 2008, आई हैव नेवर बीन सो होपफुल अबाउट आवर फ्यूचर, टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पीचेस ऑफ 21st सेंचुरी. अगर आप एक बेहतरीन ऑरेटर बनना है तो ओबामा साहब का स्पीचेस सुन लो बड़े भाई. एक एलिगेंट पॉज कैसे लेना है इनको देख के हम सीख सकते. अगले गाने हमारे लिस्ट में है ओबामा साहब का फेवरेट आर्टिस्ट का. सो स्टे ट्यून्ड.

0: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हो रही है। लोकसभा की बैठक दोपहर 2 बजे तक और राज्यसभा दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज सवेरे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों पर कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठा दिया। विपक्षी सदस्य इस मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से सदन के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह करते हुए कहा कि प्रश्नकाल के दौरान व्यवधान उचित नहीं है।
1: लोकतंत्र का सर्वोच्च मंच होने के कारण हम सबकी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम सदन में चर्चा करें, संवाद करें, अपनी सहमति असहमति व्यक्त करें, लेकिन सदन चर्चाओं के लिए ही चर्चा संवाद से हम देश की जनता का कल्याण कर पाएंगे। मैं सबको पर्याप्त अवसर दूंगा। सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
0: राज्यसभा में भी ऐसी स्थिति रही। सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर मंत्रियों ने सदन के पटल पर दस्तावेज रखे। आवासन और शहरी मामलों से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट सदन में पेश की गई। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्ष के हंगामे के बीच शून्यकाल शुरू किया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर से कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है।
2: मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चले नहीं देते हैं। इधर ऑपोजिशन करके जो जितना समय दिया वो मिसयूज करना चाहते हैं। हर समय हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं और बाकी जो मेंबर लोग ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार एलओपी का नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं।
0: लोकसभा में आज बैंकरों के बही खातों का साक्ष्य विधेयक 2026 पर चर्चा होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल ये विधेयक पेश किया था। इस विधेयक का उद्देश्य बैंकरों के बही खातों से संबंधित साक्ष्यों के लिए कानून बनाना और इसे समकालीन डिजिटल बैंकिंग कार्यप्रणालियों के अनुरूप बनाना है। वित्त मंत्री आज लोकसभा में कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 तथा विनियोग संख्या 3 विधेयक 2026 भी पेश करेंगी। इस बीच राज्यसभा में आज जन और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस विधेयक को पेश करेंगे। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक आज संसद भवन में आयोजित हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और अन्य नेताओं ने बैठक में हिस्सा लिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान को अमेरिका के साथ समझौता करने का आखिरी मौका दिया गया है। श्री ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान और कई खाड़ी देशों के कूटनीतिक आग्रह के बाद नियोजित सैन्य हमलों को रोक दिया गया है। श्री ट्रंप ने होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए बातचीत जारी रखने की पहल को पहला चरण और ईरान के परमाणु निरस्त्रीकरण पर ध्यान केंद्रित किए जाने को दूसरा चरण बताया।

Again, an amazing song. That was Bismil from Haider. हम सबको मालूम है विशाल शाह वेयर्स मेनी हैट्स. ही इज अ डायरेक्टर, लिरिसिस्ट एंड अ म्यूजिक कंपोजर, वॉट नॉट. बट एक क्रिटिकली अक्लेम्ड डायरेक्टर बनने से पहले ही विशाल साहब एक सक्सेसफुल म्यूजिक कंपोजर थे. तुम सब लोगों को आरजीवी का सत्या मालूम है ना? यस, अ सेंसेशनल मूवी विच काइंड ऑफ चेंज द लैंडस्केप ऑफ हिंदी सिनेमा. वो सत्या मूवी का म्यूजिक कंपोजर अपना विशाल साहब ही है. कभी कभी मेरे को लगता है कि द म्यूजिक कंपोजर इन हिम गेट्स ओवर शैडोड बाई द डायरेक्टर इन हिम. एनीवेज, वंस अगेन अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू विशाल भरद्वाज फॉर गिविंग अस ऑल दोज मूवीज एंड क्रिएटिंग ऑल दोज वंडरफुल सॉन्ग्स. नेक्स्ट मैं विशाल साहब का एक अंडररेटेड गाना प्ले करने वाला हूं, सो स्टे ट्यून्ड.

वेल दैट वॉज माई फेवरेट किशोर कुमार सॉन्ग, जिंदगी एक सफर है सुहाना. कैप्चर्स द एसेंस ऑफ हाउ फ्रजाइल आवर लाइफ्स कैन बी. राइट, कल क्या हो किसने जाना. दैट लाइन कैप्चर्स द सैड ट्रूथ ऑफ लाइफ. तो इट्स 12:50 in the studio clock, and the phone lines are going to open in some time, so which is in less than 10 minutes. And today's topic for our listeners is your favorite Kishore Kumar song. You can call us on the numbers 040-2323-0030, 040-2323-4821, 040-2970-4715. ये नंबर्स पे कॉल करिए और मुझे बताइए आपका फेवरेट किशोर कुमार सॉन्ग कौन सी है बोल के. सो नाउ लेट्स गेट बैक टू द मैन ऑफ द आवर, किशोर कुमार जी. फॉर जनरेशन ऑफ म्यूजिक लवर्स, हिज म्यूजिक हैज बीन कंपेनियन थ्रू एवरी फेस ऑफ लाइफ. And for countless singers who followed,

That was Roop Tera Mastana, one of popular Kishore Kumar songs. Well, it's 1:10 in the studio clock. Kishore Kumar साहब का गानों का सिलसिला और सफर चलते रहेगा. अगर आप इस सफर में मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो यू कैन कॉल अस ऑन 0402323-00300, 0402323-4821 और 0402970-4715. आई बी वेटिंग फॉर यू. टिल देन आई'ल बी प्लेइंग द नेक्स्ट किशोर कुमार सॉन्ग ऑन अवर ट्रैक.

एक लड़की भीगी भागी सी, अनदर टाइमलेस क्लासिक संग बाई किशोर कुमार एंड कंपोज्ड बाई SD बर्मन। तो ये सुरों का सिलसिला चलता ही रहेगा, अगर आप भी हमारे साथ शामिल होना चाहते हो, यू कैन कॉल अस ऑन 0402323 0030, 0402323 34821, एंड आई एम रेडी विथ अनदर किशोर कुमार सॉन्ग।

ये आकाशवाणी हैदराबाद है, FM 101.9 MHz पर, और हमें आप सुन रहे हैं मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर। सामाइन, स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त 9:30 और 30 सेकंड्स हो चुके हैं, और जैसा कि आप जानते हैं, हर शब आकाशवाणी हैदराबाद FM 101.9 MHz पर 9:30 पर पेश होता है नायरंग प्रोग्राम। तो नायरंग प्रोग्राम का आगाज हो सामाइन, आइए उससे पहले सुनते हैं कुछ अच्छी बातें। जी हाँ सामाइन, अच्छी बात को लेकर हम हाजिर हैं। प्रोग्राम नायरंग का आगाज हो उससे पहले लीजिए सुनिए ये अच्छी बात। ज़िंदगी की हकीकत यही है कि ये मुसलसल आजमाइशों और चैलेंजेस का नाम है, लेकिन इन चैलेंजेस को उबूर करने के लिए चंद अहम बातों को मद्देनज़र रखना मददगार साबित होता है। हर मुश्किल वक्त आरजी होता है। जब आप किसी चैलेंज को एक रुकावट की बजाय सीखने का मौका समझते हैं तो उससे निमटना आसान हो जाता है। बड़े और मुश्किल मसाइल एक साथ हल नहीं होते, इन्हें छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करें और एक वक्त में एक ही कदम आगे बढ़ाएं। हर मोड़ पर हर चीज अपने मुताबिक नहीं होती, लेकिन जो चीज हमारे बस में है वो है कोशिश, जिद्दोजहद। जिद्दोजहद जारी रखने से आहिस्ता आहिस्ता रास्ते खुद ही निकलने चले आते हैं। जब हालात ज्यादा कठिन मालूम हों तो अपनों, दोस्तों या तजुर्बेकार लोगों से बातचीत करें, और मशवरा करना जहन को हल्का और वाजह करता है। याद रखिए दोस्तों, मुश्किलात जिंदगी के सफर का हिस्सा हैं, और यही चैलेंजेस इंसान को अंदर से मजबूत और बाहिम्मत बनाते हैं। तो चैलेंजेस का डटकर मुकाबला करना ही एक अच्छे इंसान की पहचान है। दोस्तों, जिंदगी के हर चैलेंज को डटकर मुकाबला करना सीखें, और आजमाइशें आरजी होती हैं, आजमाइशों को थोड़े अच्छे से हैंडल करें और आजमाइशों को थोड़ा कोशिश करें कि ये आरजी आजमाइशें आपसे दूर हों, और उसके बाद आसानियां आपके मुंतज़िर होंगी, क्योंकि कहा जाता है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। तो सामाइन, चलिए इसी अच्छे मैसेज के साथ, अच्छी बात के साथ शुरुआत करते हैं नायरंग प्रोग्राम की।

आकाशवाणी हैदराबाद FM 101.9 मेगाहर्ट्ज पर नायरंग प्रोग्राम का आगाज हुआ चाहता है। प्रोग्राम नायरंग सुनने वाले सभी सामाइन की खिदमत में हमारा पुरखलूस आदाब। नायरंग प्रोग्राम का आगाज होगा हरफे ताबिंदा से। तहरीरों पेशकश होगी मोहतरमा

तो चलिए सामाइन प्रोग्राम नायरंग की शुरुआत करते हैं और सुनते हैं हरफे ताबिंदा। तहरीर व पेशकश है मोहतरमा इशरत फातिमा की।

0: हमें चाहिए कि हम अपने पड़ोसी की खुशी और गम में शरीक हो।
1: पड़ोसियों से मोहब्बत मजबूत माशरे बनाती हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की बातचीत का मौजू है पड़ोसियों से मोहब्बत मजबूत माशरे बनाती हैं। एक मरतबा हुजर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी ने शिकायत की कि इनकी पड़ोसन बीमार होने के बावजूद इनकी मदद को आती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्करा कर फरमाया, वो तुम्हारी जन्नत में जाने का सबब बन रही है, ज़रूरत पड़ने पर खाना बांटे और इनकी दिलजोई करे। क्या आज हम में से हर कोई ये कह सकता है कि इसने अपने पड़ोसी के हकूक़ पूरे किए? माशरे मुख्तलिफ पस मंज़र सकाफ़तों और तजुर्बात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद का एक खूबसूरत गुलदस्ता है। ये अफराद शहरों, गांवों, अपार्टमेंट्स और मोहल्ले जैसे मुश्तरीका मुकामात में एक साथ जीते हैं। इस जुड़ी हुई जिंदगी का एक सादा मगर गहरा सच है कि हमारी इज्तिमाई खुशहाली इस बात पर मुनहसर है कि हम एक दूसरे के साथ कैसा सलूक करते हैं। हमसायों के लिए मेहरबानी और सबको साथ लेकर चलने का जज्बा सिर्फ अखलाकी बातें नहीं बल्कि तरक्की याफ्ता मजबूत माशरे की बुनियाद है। हमसाये हमारे सामाजिक निज़ाम में से सबसे करीबी रिश्तेदार होते हैं। रोज़मर्रा की छोटी छोटी बातें जैसे सीढ़ियों में मुस्कराहट देना, किसी को कोई चीज़ उधार देना या मुश्किल वक्त में खैरात मुअल्लम करना एतमाद और मदद का एक मजबूत जाल बुनती है। शोर कम रखना या मुश्तरिका जगहों की सफाई जैसे छोटे इकदामात भी हम आहंगी को फ़रोग देते हैं। जब हमसाये बेपरवाही के बजाय हमदर्दी को तरजीह देते हैं तो वो अनजाने चेहरों को अपनायत में बदल देते हैं और यही जज्बा पूरे माशरे में मुस्बित तब्दीली लाते हैं। शमूलियत इस बात को यकीनी बनाती है कि कोई भी खुद को अजनबी महसूस ना करे, चाहे इसकी जबान मजहबी हो या तर्ज जिंदगी कुछ भी। आज के दौर के मोहल्ले दुनिया की एक छोटी सी झलक बन चुके हैं, जहां लोग मुख्तलिफ इलाकों, पेशों और अंदाज से ताल्लुक रखते हैं। इस तनाव को कबूल करना हमें एक दूसरे से सीखने का मौका देता है। मिसाल किसी अपार्टमेंट में मुख्तलिफ सकाफतों के त्यौहार मनाना या सबका अपना पकवान लेकर मोहल्ले की दावत में आना, ये सब फरोग को कबूल करने और एकता बढ़ाने के अमली तरीके हैं। शमूलियत दीवारों को तोड़ती है और दिलों को जोड़ती है। शहर और गांव इस वक्त तरक्की करते हैं जब वहाँ के रिहायशी पार्क, सड़कें और बाजार जैसी जगहों को इज्तिमाई असासा समझते हैं। आज के दौर में जब लोग एक दूसरे के करीब तर रहने लगे हैं तो हमें ताउन और नज़्म निहायत ज़रूरी हो गया है। जैसे किसी गली में दुकानदार, खानदान और मुलाजमीन मिलकर सफाई रखें या ट्रैफिक कवानीन का एहतराम करें, इसी तरह एक इमारत के रिहायशी मिलकर बिजली, पानी जैसे मामलात पर फैसले करते हैं। इन जगहों से हम सीखते हैं कि साथ रहना सिर्फ बर्दाश्त का नाम नहीं बल्कि एक दूसरे की ज़रूरियात को समझना और मिलकर बेहतरी लाना है। पुरअमन ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है कि इनफरादी आज़ादी और इज्तिमाई भलाई में तवाज़ुन हो। हर शख्स को

राजदारी, सलामती और इजहार राय का हक है, मगर इनके साथ जिम्मेदारियां भी आती हैं, जैसे रात देर तक कोई तकरीब करना। तभी बेहतर है जब आसपास के लोगों के सुकून का ख्याल रखा जाए। इस तरह कचरे को ठीक से ठिकाने लगाना सिर्फ सफाई नहीं बल्कि सेहत की जमानत है। ये तवाजुन हमें झगड़ों से बचाता है और इज्तिमाई फैसलों को फरोग देता है। जब लोग मसाइल को मिलकर हल करते हैं तो माशरे मजबूत बनते हैं। कूड़ा क्रिकेट का इंतजाम, सड़कों की मरम्मत या सिक्योरिटी जैसे मसाइल सिर्फ बैठकर ही सुलझाए जा सकते हैं। महल्ले की मीटिंग्स, सोशल मीडिया ग्रुप्स या रिहायशी कमेटियां ऐसे प्लेटफॉर्म बन जाती हैं जहां लोग अपने वसाइल, आइडियाज और हल बांटते हैं। जैसे मुंबई के किसी फ्लैट में रहने वाले लोग मिलकर सवार पैनल लगाते हैं, या कीनिया के किसी गांव के लोग पानी के तहफ्फुज़ पर मिलकर काम करते हैं। ये सब हमें याद दिलाते हैं कि तरक्की का सफर अकेले तय नहीं हो सकता, ये एक इज्तिमाई मुहिम है। एक माशरे की असल ताकत इसके पल्लों, सड़कों या दौलत से नहीं बल्कि इसके लोगों के बाहमी रिश्तों से नापी जाती है। जब हम बेनियाजी के बजाय मोहब्बत और तासुब के बजाय कबूलियत को चुनते हैं, तब हम एक पायदार, खुशहाल समाज की बुनियाद रखते हैं। एक अच्छा शहरी बनने के साथ साथ जब हम अच्छे हमसाए भी बने तो ऐसी जगहें जन्म लेती है जहां सबको आगे बढ़ने का मौका मिलता है। याद रखें, इंसानियत के इस खूबसूरत कालीन में हर धागा अहम है और सिर्फ मोहब्बत, हमदर्दी और ताउन ही वो धागे हैं जिनसे हम एक रोशन कुल बनते हैं। जब हमसायों के साथ नरमी बरतते हैं और हर फर्द को अपनी बराबरी का हिस्सा बनाते हैं, तो हम सिर्फ एक अच्छा मोहल्ला नहीं बल्कि एक बेहतर दुनिया बनाते हैं। आइए आज से अहद करें, अपने पड़ोसी की मदद को हमेशा तैयार रहेंगे, चाहे वो कोई छोटा सा काम ही क्यों ना हो। याद रखिए, पड़ोसी की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। अल्लाह हमें ऐसा नेक और मेहरबान पड़ोसी बनने की तौफीक दे जो दूसरों के लिए रहमत का सबब हो। आमीन।

0: हरफे ताबिंदा, मैं हमसायों पर बहुत सी अच्छी बातें आप तक पहुंचा रही थी। मोहतरमा इशरत फातिमा, जी हाँ सामाइन, हमसाए इंसान की जिंदगी का वो पहलू हैं जो खानदानी दायरे से बाहर मगर दिल के करीब होते हैं। मुआशरती रिश्तों में हमसाया एक ऐसा रिश्ता है जो ना खून का होता है ना नसब का, मगर इसकी बुनियाद मोहब्बत, हमदर्दी और गुर्बत पर कायम होती है। प्रोग्राम नरंग में हरफ ताबिंदा के बाद सामाईन अब आइए सुनते हैं बेदारी कायनात। इस सिलसिले के तहत डिजिटल लर्निंग में असातिज़ा इकराम का किरदार, इस उन्वान के तहत तकरीर सुनिए और पेशकश है मोहतरमा सना अलमास की, लीजिए सुनिए।
1: जदीद दौर में डिजिटल लर्निंग तालीम का एक मुनज्जम तरीका है। डिजिटल लर्निंग भी हम रिवायती तालीम की तरह तालीम के मकासद और अगराज को हासिल करने की कोशिश करते हैं। डिजिटल और ऑनलाइन लर्निंग को हम कोरोना के बाद अच्छी तरह से समझ सकते हैं। कोरोना दौर में असातिज़ा ने डिजिटल वसाइल से तालीम तलबा तक पहुँचाने की कोशिश की। हम ये कह सकते हैं कि कोरोना दौर में डिजिटल लर्निंग के नज़रियाती तसव्वुर को अमली जामा पहनाया। डिजिटल लर्निंग सिर्फ ऑनलाइन ज़रिए से ऑनलाइन आना ही नहीं है, बल्कि ये एक तालीमी अमल का फ़ाल हिस्सा है। डिजिटल लर्निंग में तालीमी टेक्निकी, डिजिटल आलात, तदरीसी मवाद,

मुअद्दत और मनासब प्लेटफॉर्म के तहत तदरीस को कमराए जमात में बहस व मुबाहस बनाना है। अब तालीमी टेक्निकी से आगे का दौर डिजिटल लर्निंग का है। हिंदुस्तानी हुकूमत ने डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत अवाम की आम जिंदगी में भी डिजिटल सहूलियात फराहम की है। डिजिटल तालीम भी डिजिटल इंडिया का अहम हिस्सा है। तालीमी टेक्निक से हम तदरीसी मवाद को तलबा तक पहुंचाते हैं, जबकि डिजिटल लर्निंग में निसाब की सभी सरगर्मियों को शामिल किया जाता है। डिजिटल तालीम इक्तसाब की नफसियाती तदरीसी मवाद की पेशकश इतलाआत जमा करना, तदरीसी वसाइल की पहुंच बनाना, तालीम में डिजिटल आलात को इस्तेमाल करना, वसाइल को जांचना, डिजिटल तालीम में जदीदियत को बढ़ावा देना और इसके मसाइल का मुतालबा करने को शामिल कर सकते हैं। मोबाइल लर्निंग के दौर में डिजिटल लर्निंग भी नए रास्तों पर चल पड़ी है। आज मोबाइल लर्निंग से तलबा अपने आप को इक्तिसाब में खुद मुख्तार हो सकते हैं। इस तहकीकी मकाले में डिजिटल लर्निंग के दौर में उस्ताद के किरदार को वसी तौर पर मुताला करने की कोशिश की गई है। मुताले की बुनियाद पर असातिजा के किरदार की निशानदेही की गई है। डिजिटल लर्निंग टेक्नोलॉजी के जरिए आसान सीखना है, जो तलबा को वक्त, जगह, रास्ते, रफ्तार, टेक्नोलॉजी, डिजिटल मवाद और हिदायत पर कंट्रोल का कुछ अनासर फराहम करता है। इक्तिसाब अब स्कूल के दिन या तालीमी साल तक महदूद नहीं है, बल्कि इंटरनेट और इंटरनेट तक रसाई के आलात के फैलाव ने तलबा को किसी भी वक्त सीखने की सलाहियत फराहम की है। क्लासरूम की दीवारों के अंदर सीखना अब महदूद नहीं रह गया, बल्कि इंटरनेट और इंटरनेट तक रसाई के आलात के फैलाव ने तलबा को कहीं भी हर जगह सीखने की सलाहियत फराहम की है। सीखना अब उस्ताद के जरिए इस्तेमाल होने वाली कमराए जमात की तदरीसी तक महदूद नहीं है, बल्कि इंटरेक्टिव और मवाफिक पजीर सॉफ्टवेयर तलबा को अपने अंदाज में सीखने की इजाज़त देता है। सीखने को जाती और दिलचस्पी बनाता है। नई सीखने की टेक्नोलॉजी रियल टाइम डेटा फराहम करती है, जो असातिजा को वो मालूमात फराहम करती है, जिनकी इन्हें हर तालिबे इल्म की मुनफर्द ज़रूरियात को पूरा करने के लिए हिदायत के साथ तालमेल करने की ज़रूरत होती है। इक्तिसाब अब तलबा के पूरे क्लासरूम की सरगर्मियों तक महदूद नहीं है, बल्कि इंटरेक्टिव और मवाक़फ़त पसीर सॉफ्टवेयर तलबा को अपनी रफ्तार से सीखने की इजाज़त देता है। सीखने की एक ही सतह को हासिल करने के लिए असबाक या मजामीन पर कम वक्त सर्फ करता है। डिजिटल लर्निंग में टेक्नोलॉजी वो तरीक़ेकार है जो तदरीस व इक्तिसाब में मदद करता है, जो कि आज के दौर में तदरीसी मवाद को फराहम करने में सहूलियत पैदा करता है। तलबा किस तरह मवाद हासिल करते हैं, इसमें इंटरनेट तक रसाई और हार्डवेयर शामिल है, जो कि इंटरनेट तक रसाई का कोई भी आला हो सकता है। डिस्कटॉप, लैपटॉप से लेकर आईपैड से स्मार्टफोन तक टेक्नोलॉजी आलात हिदायत नहीं। डिजिटल मवाद आला मायार का तालीमी मवाद है, जो टेक्नोलॉजी के जरिए फराहम किया जाता है। ये वही है जिससे तलबा पढ़ते और सीखते हैं। इसमें नई दिलचस्पी, इंटरेक्टिव सॉफ्टवेयर, क्लास लिटरेचर्स, वीडियो लेक्चर्स, गेम्स तक शामिल है। ये महज मतन की PDF या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं है, बल्कि ये जदीद दौर में सीखने सिखाने का एक वसी नजरिया है। आज के दौर में डिजिटल लर्निंग तलबा से लेकर आम आदमी सब पर असरअंदाज है। डिजिटल लर्निंग कमराए जमात से निकलकर आम आदमी की जाती जिंदगी को मुतासिर करता है। मौलम के लिए ये जरूरी है कि वो डिजिटल लर्निंग व टेक्नोलॉजी के वसाइल से रोशनास हो। आज उस्ताद का किरदार भी डिजिटल हो गया है, जो उस्ताद के किरदार को बदल सकती है। डिजिटल लर्निंग के साथ असातिजा इस बात को यकीनी बनाते हैं कि वो अपनी रहनुमाई और मदद फराहम कर सके। तलबा को सीखने और अपने इक्तिसाबी तसलसल पर रहने को यकीनी बनाने के लिए असातिजा डिजिटल लर्निंग में एक अहम किरदार अदा करता है। कदीम हिंदुस्तान में असातिजा फिक्र के रूहानी आलमबरदार माने जाते थे। उस्ताद के बगैर तालीम नामुमकिन थी और वो तालीम के गुरु

आने जाते थे। शागिर्द का अपने गुरुओं के साथ बहुत रूहानी, गहरा और दोस्ताना ताल्लुक था। तालीम के अलावा बहुत से मामलात में उस्ताद ने अपने शागिर्द का साथ दिया, लेकिन रफ्ता रफ्ता उस्ताद का किरदार बदल कर सहूलतकार हो गया। तालीमी निज़ाम ने वैदिक दौर से लेकर पूरे सीखने के अमल में बहुत तरक्की की है। ब्लैक बोर्ड और लेक्चर के तरीक़ेकार का इस्तेमाल करते हुए अब आहिस्ता आहिस्ता टेक्नोलॉजी मुख्तलिफ समयी वो बसरी इमदाद के साथ कमराए जमात में दाखिल हो गई, जिससे डिजिटल लर्निंग में इक्तसाबी अमल का रोल मुतासर होने लगा। लेकिन इससे असातिज़ा को तदरीसी अमल के मायार को बढ़ाने में मदद मिली। आज के कंप्यूटर के दौर में असातिज़ा का किरदार बहुत बदल गया है। असातिज़ा आज सीखने के सफर में रहनुमाई के तौर पर काम करते हैं और तालिबे इल्म को खुद से बेहतरीन हासिल करने के काबिल बनाते हैं। आज असातिज़ा अपने तलबा में कसीर जहती महारतें पैदा करने की कोशिश करते हैं और इन्हीं जिंदगी की महारत और सॉफ्ट स्किल्स दोनों सिखाते हैं, जो तलबा के इक्तिसाबी अमल में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। असातिज़ा जदीद तदरीसी तरीक़ेकार को अपनाने की मुसलसल कोशिश करते हैं और इनकी बुनियादी तवज्जो हर तालिबे इल्म के लिए सीखने को मजीद पुरलुत्फ और दिलचस्प बनाना होता है, जिसके जरिए मतअद जहानों को उभारा जा सकता है। चूँकि तालीम महज नौकरी हासिल करने की सीढ़ी नहीं बल्कि जिंदगी गुजारने का एक अहम तरीका है। कोरोना दौर में तालीम बड़ी हद तक ऑनलाइन हो गई और ऑनलाइन के जरिए ही तदरीसी अमल को अंजाम दिया जाने लगा। चूंकि कोरोना की वजह से लॉकडाउन के औकात में तालीम के लिए डिजिटल वसाइल जूम, व्हाट्सएप और गूगल क्लासेस का इस्तेमाल काफ़ी हद तक किया जाने लगा, कोरोना दौर को ऑनलाइन लर्निंग से मौसम किया जाने लगा। उस्ताद ऑनलाइन लर्निंग से तलबा को घर में महफूज और सेहतमंद रखकर निसाब के साथ तदरीसी अमल को अंजाम देने लगे। उस्ताद ऑनलाइन लर्निंग से कोरोना दौर में सभी तलबा को हम आहंग रखने और इक्तिसाबी अमल को पूरा करने में लगे रहते थे। ई लर्निंग की बात करें तो कुछ असातिज़ा मुख्तलिफ वर्चुअल प्लेटफॉर्म से वाकिफ ही नहीं थे, जिससे तदरीसी अमल का मकसद पूरा हो सके। चूंकि असातिज़ा पढ़ाने के जज्बे से सरशार हैं, इसके बरक्स इन्होंने खुद को डिजिटल क्लासरूम के लिए तैयार किया और तमाम जरूरी टूल से वाकिफ और इंटरनेट से आगाह होने की कोशिश की। इन काविशों से इन्हें टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में पूर एतमाद हासिल हुआ। ये कोरोना वबाई मर्ज की देन है डिजिटल क्लासेस। कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे तलबा की तवज्जो हासिल करना, ऑनलाइन क्लासेस में दिलचस्पी लेना, तदरीस के ऑनलाइन तरीके से वाकिफियत और उससे तहकीकी सलाहियत की कमी वगैरह। सभी तलबा के पास डिजिटल लर्निंग से मुतालिक वसाइल की कमी, इंटरनेट की रसाई, वालिदैन की डिजिटल लर्निंग से नावाकिफियत व माशी हालात भी अहम चुनौतियाँ हैं। डिजिटल लर्निंग के दौर में तालीम तक सबकी पहुंच होना भी एक अहम मसला है, जो कि तालीम में मसावात पर सवाल पैदा करता है। डिजिटल लर्निंग एक बेहतरीन तदरीस का जरिया है, अगर इसे मौसर तरीके से इस्तेमाल किया जाए। बहुत सारी तहकीक से ये बात वाजे है कि ऑनलाइन इक्तिसाब से मालूमात को हासिल करने में कम वक्त लगता है। कौमी तालीमी पॉलिसी साल 2020 डिजिटल तालीम का मुनज्जम नज़रिया पेश करती है। कौमी तालीमी पॉलिसी साल 2020 की सिफारिशात में ऑनलाइन तालीम को भी मायारी तालीम बनाने पर जोर दिया गया, जिसकी पहुंच सभी तक आसान हो सके। कौमी तालीमी पॉलिसी के तहत एक नया खुद मुख्तार इदारा NETF नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम कायम किया जाएगा, जो तालीम की तमाम सतहों पर डिजिटल तरीके कार को अपनाने के तौर पर तरीके बनाएगा। ये खास तौर पर क्लासरूम के तरीके और इदारों के लिए असातिज़ा की पेशा वाराना तरबियत की मवाद और कमराए जमात की तदरीस व इक्तिसाब को डिजिटल लर्निंग से जोड़ेगा। कोरोना दौर में असातिज़ा नए डिजिटल असबाक का चैलेंज के साथ दर्स व तदरीस में इस्तेमाल कर चुके हैं और इन्होंने हर सूरत हाल से हम आहंग होने का सबूत दिया। दुनिया के लिए भले ही हम सिर्फ उस्ताद हों, लेकिन अपने तलबा के लिए हम मिसाल हैं। अब हिंदुस्तान में बहुत सारे आम जिंदगी के
काम डिजिटल पर मुनसर।

सर हो चुके हैं। माहिरीन तालीम से पूरी दुनिया के तलबा तक डिजिटल तालीम पहुंचाने व तजुर्बा करने को लाजमी बनाया है। असातिज़ा ने हमेशा तसव्वुर को आसान बनाने के लिए डिजिटल तदरीस के तहकीकी तरीक़ेकार को शामिल करने की कोशिश की है। इन्हीं असातिज़ा को अब एक नए चैलेंज का सामना करना पड़ा कि ऑनलाइन तदरीस में मज़ीद तहकीक कैसे बनाया जाए। तालीमी निज़ाम मुसलसल सीखने वालों के लिए बेहतरीन और आला मैयार की तालीम का मतालबा करता है। दुनिया की बदलती हुई तौकात के साथ साथ असातिज़ा के किरदार मज़ीद पेचीदा और मतखाजी होते जा रहे हैं। दुनिया की टेक्नोलॉजी के समेत बढ़ने के साथ साथ असातिज़ा से इनकी तदरीसी तौकात तब्दील हो रही है। इसीलिए आज डिजिटल लर्निंग के दौर में उस्ताद का किरदार भी तेज़ी से बदल रहा है। अब उस्ताद को दर्स व तदरीस के बदले हुए डिजिटल तरीक़ों से अपने आप को हमेशा तैयार रखना पड़ेगा। आज हम देख सकते हैं कि स्मार्टफोन ने लर्निंग को बहुत आसान और सहल बना दिया है। अब लर्निंग का दौर समी बसरा से होता हुआ कंप्यूटर और इंटरनेट से तरक्की पाता हुआ मोबाइल लर्निंग तक पहुंच गया है। तदरीसी इक्तसाब के अमल में एक मिसाली तब्दीली है और ये तब्दीली नागजीर है। चाहे वो ऑनलाइन क्लासेस हो या ऑफलाइन क्लास, असातिज़ा से तौका की जाती है कि वो टेक्नोलॉजी पर मुबनी अपनी तदरीस को बेहतर तरीके से अंजाम दे। डिजिटल इक्तसाब दुनिया में असातिज़ा के बदलते हुए किरदार को देखने के लिए बहुत से तनाजर हैं। तलबा के मतना ग्रुप और इनके मतालबात की वजह से असातिज़ा को दरपेश मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। डिजिटल दौर ने असातिज़ा के मुख्तलिफ किरदार अदा करने के मौके फराहम किए हैं। डिजिटल तालीम ने असातिज़ा को एक प्लेटफॉर्म फराहम किया है ताकि सीखने वालों को मयारी तालीम फराहम हो सके। नेटवर्किंग ने इन्हें तलबा के साथ साथ माहिरीन के एक बड़े ग्रुप तक पहुंचने के लिए एक वसी नुमाइश फराहम की है। चैलेंजेस और मौके ने असातिज़ा के लिए निसाब की डिजाइनिंग और डिलीवरी के हुसूल से तजुर्बा करने की राहें भी खोल दी हैं। समाजी वसाइल के साथ अपडेट रहते हुए मौजूदा मामलात से बखूबी तौर पर जुड़ी हुई है। असातिज़ा एक ही प्लेटफॉर्म पर जितना ज्यादा तलबा के साथ तालमेल कर सकेंगे, इससे असातिज़ा का तलबा के साथ रابطہ ज्यादा मुतासिर होगा। असातिज़ा के किरदार को इंस्ट्रक्टर से बदलकर सहूलतकार बना दिया गया है। वो इल्म हासिल करने वालों को हौसला अफजाई, सीखने वालों के रवैये को बदलने के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। पहले के मुताबिक तलबा अब किसी छोटी जगह तक महदूद नहीं रहे, पूरी दुनिया इनके इल्म हासिल करने के लिए खुली हुई है। जो असातिज़ा को अपनी तदरीस के नए और बेहतरीन तरीके इख्तियार करने के लिए ज्यादा मजबूर कर रही है। इल्म जिस तरह लामहदूद है, ठीक उसी तरह डिजिटल दौर में एक उस्ताद जो किरदार अदा कर सकता है वो भी लामहदूद है। असातिज़ा तलबा के साथ साथ मौजूदा दौर से भी आगे रहें ताकि तमाम शोबों में ताज़ा तरीन अपडेट्स को कमराए जमात में पहुंचाया जा सके। लेकिन क्या होगा अगर कमराए जमात का वजूद खत्म हो जाए? शायद यही वो सूरत हाल है जिसमें हमें कोरोना ने मुतासर किया। यहाँ खास बात यह है कि उस्ताद को न सिर्फ मजमून के बारे में सीखना बल्कि कमराए जमात के बगैर उसे कैसे पढ़ाना है भी सीखना होगा। एक आम सवाल यह है कि ऑनलाइन टूल्स को कैसे हैंडल किया जाए? जो असातिज़ा को ऑनलाइन कमराए जमात और रिवायती कमराए जमात में मदद देते हों, असातिज़ा को अब ये जानने की जरूरत है कि ये सॉफ्टवेयर कैसे काम करते हैं, जैसे ऑनलाइन क्लासेस को कैसे शेड्यूल करना, वीडियोस और तदरीसी मवाद को किस तरह शेयर करते हैं वगैरह। कमराए जमात की तदरीस के मामले में उस्ताद अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन डिजिटल तौर पर तलबा तौका से कहीं ज्यादा जान सकते हैं। उस्ताद ने डिजिटल लर्निंग के मुतालिक इंफरादी तौर पर बहुत कुछ सीखा है और ऑनलाइन जरिए से उस्ताद और तालिबे इल्म के दरमियानी फासले को कम किया है। उस्ताद हर एक की जिंदगी में एक नागजीर किरदार अदा करते हैं। वो सिखाते हैं, बाएख्तियार बनाते हैं,
حقیقی زندگی سے تعلق جوڑتے ہیں، حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔

गैरमरई पुल हैं जहां फासले, वक्त और मादी दुनिया की पाबंदियां दम तोड़ देती हैं। ऐसे ही ख्वाबों की बातें हम करने जा रहे हैं, गीत सुरीले गाते जामे, और ख्वाबों को गीतों के जरिए समझने की कोशिश करेंगे।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में सिलसिला फिल्म से लिया गया नगमा आपने सुना। नायरंग प्रोग्राम जारी है और गीतों का सिलसिला लेकर हम हाजिर हैं गीतों के सफ़र में, जिसका नाम है गीत सुरीले गाता जा। और गीतों के सुरीले सफ़र में हम आपको बता रहे हैं ख्वाबों की हकीकत रूमानी अंदाज में। समाइन, आशिक के लिए ख्वाब एक ऐसी पनागाह हैं जहां वो महबूब को बगैर किसी खौफ, झिझक या जमाने की रुकावट के अपने सामने देखता है। जब दुनिया सख्त और बेहिस हो जाती है तो ख्वाब रूह को वो नरमी और सुकून देते हैं जो हकीकत देने से खासिर रहती है। रूमानियत कहती है कि जो बातें जुबान पर नहीं आतीं, जो जज्बात बेदारी में दिल के किसी अंधेरे कोने में छिप जाते हैं, ख्वाब उन्हें आज़ाद कर देते हैं। ये इंसान के अंदरूनी जज्बात, बेसाख्ता मोहब्बत और तड़प का सबसे पाकीज़ा और सच्चा इजहार होते हैं।

दिल वाले दुल्हनियाँ ले जाएंगे, इस फिल्म का नगमा आपने सुना और इस गीत को गाया था लता मंगेशकर ने। आप सुन रहे हैं नैरंग प्रोग्राम, और नैरंग प्रोग्राम में गीत सुरीले गाता जा सिलसिला जारी है, और इस सिलसिले में ख्वाबों पर गीत सुनाए जा रहे हैं। सुनते रहिए आकाशवाणी हैदराबाद FM 101.9 MHz। ख्वाबों की बात चली है नारंग प्रोग्राम में गीत सुरीले गाते जा सिलसिले के तहत। इंसान जिंदगी में जिन हसरतों और तमन्नाओं को पूरा नहीं कर पाता, ख्वाब उन्हें एक मुकम्मल और खूबसूरत शक्ल दे देते हैं। ख्वाब की दुनिया में हर अधूरी दास्तान मोहब्बत मुकम्मल हो जाती है। एक शायराना सोच के मुताबिक मोहब्बत खुद एक ख्वाब है जो बेदार आंखों से देखा जाता है, और जब इंसान किसी से बेपनाह मोहब्बत करता है तो नींद और बेदारी का फर्क मिट जाता है।

गीत सुरीले गाता जा में अभी आपने किशोर कुमार और उनके साथियों की आवाज़ों में फिल्म तीन देवियां से लिए गए गीत को सुना। आप सुन रहे हैं नायरंग प्रोग्राम और नायरंग प्रोग्राम में पेश हो रहा है गीत सुरीले गाते जा, और हम बात कर रहे हैं ख्वाबों की। ख्वाब और मोहब्बत दोनों एक ही इस्तियारे के दो मुख्तलिफ नाम हैं। ये दोनों इंसान को मादी दुनिया के सख्त और बेरहम ख्वानीन से आज़ाद करके एक ऐसी दुनिया में ले जाते हैं जहां सिर्फ एहसास की हाकमियत होती है। यहां ख्वाब और मोहब्बत के बाहमी ताल्लुक के कुछ बुनियादी और लतीफ पहलू दिए गए हैं। ना आप मोहब्बत को हाथों से छू सकते हैं और ना ही ख्वाब को कैद कर सकते हैं। दोनों का ताल्लुक एहसास से ज़्यादा धड़कन और मोहब्बत है। जैसे ख्वाब आँख खुलते ही हाथ से छूट जाता है, वैसे ही मोहब्बत भी इंसान के बस में नहीं होती। ये जब आती है तो रूह पर छा जाती है, और जब तड़पाती है तो ख्वाब बनकर आंखों में

किशोर कुमार को आपने सुना। आप सुन रहे हैं नैरंग प्रोग्राम और गीत सुरीले गाते जा। इस सिलसिले के तहत ख्वाबों पर कुछ फिल्मी नगमे पेश किए जा रहे हैं। सुनते रहिए आकाशवाणी हैदराबाद FM 101.9 MHz। जहां ख्वाबों की बात चली है सामाइन, दिन की रोशनाइयत में जो बातें शर्म व हया या जब्त की नजर हो जाती हैं,

छाया या जब्त की नजर हो जाती हैं। ख्वाबों का अंधेरा और तन्हाई उन बातों को जुबान दे देती है। ख्वाब में महबूब का आना और शोखी से छेड़कर गायब हो जाना आशिक के दिल में एक ऐसा इस्तिराब पैदा करता है जो बेदारी के बाद भी मिटता नहीं। शायर इसी कैफियत में मुब्तला होकर एक अजब कश्मकश में पड़ जाता है। एक तरफ आंखें खोलने का डर होता है कि कहीं ये हसीन मंजर गायब ना हो जाए, और दूसरी तरफ बेदार होकर उस छेड़छाड़ की मीठी याद में तड़पने का अपना एक लुत्फ होता है। इसी एहसास की अक्कासी करता हुआ एक मुख्तसर शायराना रूप। रात ढले जब खामोशी के दीप जलाए जाते हैं, रात ढले जब खामोशी के दीप जलाए जाते हैं, तुम चुपके से ख्वाब नगर में छेड़ने चले आते हैं। न कोई आहट, न कोई दस्तक, बस एक लतीफ सा एहसास, और आंख खुलते ही जुल्फों की खुशबू छोड़ जाते हो। ये जो ख्वाबों में आकर छेड़ जाते हो तुम, ये जो ख्वाबों में आकर छेड़ जाते हो तुम, बेदार होकर हम दिन भर किससे उलझते रहें। ऐसे ही जज्बात, शायराना जज्बात लेकर अगला नगमा आपकी खिदमत में पेश हो रहा है, लीजिए सुनिए।

अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ों में गुप्त फिल्म से लिया गया नगमा आपने सुना। आप सुन रहे हैं नारंग प्रोग्राम, और नारंग प्रोग्राम में गीत सुरीले गाता जा, ये सिलसिला जारी है। सुनते रहिए आकाशवाणी हैदराबाद FM 101.9 MHz। परियों की कहानियों में ख्वाबों का शहजादा, वो नायाब और बेऐब किरदार है जो तमाम मुश्किलात और रुकावटों को उबूर करके आता है। ये सिर्फ एक खूबसूरत इंसान नहीं, बल्कि तहफ्फुज़, सच्ची मोहब्बत और अधूरी ख्वाहिशात की तकमील का अलामत होता है। इंसान की फितरत है कि वो अपने जहन में किसी न किसी मिसाली वजूद का खाका बनाता है। ख्वाबों का शहजादा असल में इंसान की अपनी ख्वाहिशात, आरजुओं और खूबसूरत जज्बात का अक्स होता है, जिसे वो मादी दुनिया में तलाश करता है। वो जो ख्वाबों में एक शहजादा की सूरत लिया है, वो जो ख्वाबों में एक शहजादा की सूरत लिया है, आँख खुलते ही ख्यालों का निचोड़ निकलता है। हम जिसे ढूंढते रहते हैं हकीकत की जगह, वो फक्त बंद सी आँखों का सफर निकलता है।

बात चली है ख्वाबों की, आप सुन रहे हैं गीत सुरीले गाता जामे ख्वाबों को लेकर, ख्वाबों पर बने गीत। दोस्तों, जहां ख्वाब एक हसीन एहसास दे जाते हैं, एक हसीन एहसास मोहब्बत का, एक हसीन एहसास लुत्फ़ंदोज़ी का, वहीं ख्वाब टूटने का दर्द भी बेहद होता है। ख्वाब के दो पहलू हैं सामाइन, एक है हसी एहसास और दूसरा है ख्वाबों के टूटने का एहसास। टूटे ख्वाब इंसान के अंदर की उस खामोशी तोड़फोड़ का नाम है जो बाहर से दिखाई नहीं देते। ये वो आरजुएं हैं जो बेदार आँखों से सजाई गई थीं, मगर वक्त और हालात की तल्ख हकीकतों से टकरा कर बिखर गईं। जब कोई ख्वाब टूटता है तो वो सिर्फ़ एक ख्याल नहीं मिटता, बल्कि उसके साथ जुड़ी हुई उम्मीदें, मंसूबा बंदियां और मुस्तकबिल के तमाम रंग भी धुंधला जाते हैं। इंसान को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ ख्वाब के टूटने से नहीं, बल्कि उसके बाद पैदा होने वाले सन्नाटे से होती है। ख्वाबों का टूटना इंसान को मादी दुनिया के बेरहम सच से मिलाता है। ये वो नुक्ता है जहां इंसान अपने खाम ख्याली के हौल से निकलकर जिंदगी के कठिन रास्तों को देखना शुरू करता है। ये लम्हा अगरचे तकलीफ दे होता है, लेकिन यही इंसान को पुख्तगी बख्शता है। टूटे हुए ख्वाब दिल के अंदर कांच के टुकड़ों की तरह छुपते रहते हैं। आंखें जितनी बार बेदारी के बाद भी उनको जमा करने की कोशिश करती हैं, रूह उतनी ही जख्मी होती है। रेजा रेजा बिखर गए वो जो सच्चे थे आंखों में, रेजा रेजा बिखर गए वो जो सजे थे आंखों में, अब टूटे ख्वाबों का मलबा उठाए कहाँ जाएं। जिन ख्वाबों की ताबीर में हमने जिंदगी वार दी, आंख खुली तो देखा बस धुआं ही धुआं था।

0: मधुमति फिल्म से लिया गया नगमा आपने सुना। इस गीत को गाया था मोहम्मद रफ़ी ने। सामाइन, इसी गीत पर गीत सुरीले गाता जा का सफ़र अब यहीं पर रुकता है। आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नए रंग और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी हैदराबाद FM 101.9 MHz।
1: अपने हैदराबाद का पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा, हैदराबाद तो बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा, यहाँ पे फ्यूचर सिटी भी बनने वाला है। यहाँ पे बड़े बड़े बिल्डिंगा बन रही, कंपनियाँ खुल रही, लोगों की सहूलत के वास्ते रोडा, फ्लाईओवरा और ब्रिजा बनाते जा रहे। जिधर देखो उधर महंगे महंगे गाड़ियाँ भागते हुए दिख रही। तरक्की तो बहुत हो रही मगर एक्सीडेंट भी हो रहे। ट्रैफिक पुलिस और लोगों की भलाई के वास्ते काम करने वाले तंजीमा अपनी पब्लिक को ट्रैफिक रूल्स बता बता के थक जा रहे हैं। हेलमेट पहनो, सीट बेल्ट पहनो, एक्सीडेंटों से बचो बोल रहे हैं मगर अपने हैदराबादियाँ हैं कि सुन रही नहीं। चालाना मारे तो भी पब्लिक को कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरे को बस इतना ही बोलना है, रोडों पर गाड़ियाँ नको भगाओ, सीट बेल्ट और हेलमेट पहन के गाड़ियाँ चलाओ। अपन जब घर से निकलते तो अपने घर वाले अपने घर को आने का इंतज़ार करते रहते। अगर बगैर हेलमेट के और बगैर सीट बेल्ट के अगर गाड़ियां चलाएंगे तो घर को तो बाद में, पहले उस्मानिया ने तो गांधी को पहुंच जाते। रोड सेफ्टी अपने साथ साथ दूसरे लोगों के वास्ते भी बहुत ज़रूरी है, तो रोड सेफ्टी के रूल्स को फॉलो करो, घर को सही सलामत पहुंचो, हेलमेट और सीट बेल्ट पहन के गाड़ियाँ चलाओ।
0: रोड सेफ्टी के रूल्स को फॉलो करो, अपने घर को सही सलामत पहुंचो। समाइन, आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नए रंग। आखिर में पयाम-ए-शब समाप्त कीजिए।

0: कैसे कहें कि तुझको भी हमसे है वास्ता कोई, तूने तो हमसे आज तक कोई गिला नहीं किया। रिश्तों को सिर्फ दिल में रखने के बजाय उनका इजहार भी जरूरी है। खामोशी बाज़ औक़ात मोहब्बत से ज़्यादा बेरुखी का तासुर देती है। अगर किसी से ताल्लुक़ हो, उसकी फ़िक्र हो या उससे तवक्कयात वाबिस्ता हो, तो मुनासिब अंदाज में अपने जज्बात का इजहार करना चाहिए। रिश्ते सिर्फ दिल में नहीं, रवैयों और अल्फाज में भी नज़र आने चाहिए। मोहब्बत, ताल्लुक और खलुस का इजहार करते रहो, क्योंकि मुसलसिल खामोशी कभी कभी फासले पैदा कर देती है। गिला हमेशा दुश्मन से नहीं किया जाता, बल्कि अक्सर वही शख्स शिकायत करता है जिसके दिल में ताल्लुक और अपनाइयत होती है। इसीलिए अपने अजीज रिश्तों की कदर करो और उनसे राब्ता व इजहार बरकरार रखो।
1: पयाम शब आपने सुना। इसी पर सामाइन, आज का नया रंग प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचता है। आपसे कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। शब बखैर। चंद ही लम्हों में समाचार दिल्ली से रिले किए जाएंगे। 11:05 पर अंग्रेजी समाचार सुनिएगा।
2: संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे राज्यसभा ने आज स्वीकृति दी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाने और जन्म तथा मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है।
3: इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु के पंजीकरण में होने वाली देरी को रोकने और लोगों को समय पर पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित करना है। नए प्रावधान के तहत अगर किसी जन्म या मृत्यु की जानकारी 1 साल बाद लेकिन 2 साल के भीतर दी जाती है तो उसका पंजीकरण जिला मजिस्ट्रेट, उपमंडल मजिस्ट्रेट या DM द्वारा अधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति मिलने के बाद ही होगा। अनुमति देने से पहले अधिकारी को यह जाँच करनी होगी कि उस व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी सही है या नहीं। यदि जन्म या मृत्यु की सूचना 2 वर्ष से अधिक समय के बाद जाती है तो उसका पंजीकरण केवल प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही किया जाएगा।

0: जन्म और मृत्यु का पंजीकरण कराना सभी के लिए अनिवार्य है और इसके बाद मिलने वाला प्रमाण पत्र किसी व्यक्ति की कानूनी पहचान का महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: लोकसभा ने आज विनियोग विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसमें 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई थी। इस राशि को पूरा करने के लिए देश की संचित निधि से धन के विनियोग को अधिकृत करने का प्रावधान है। सरकार ने कुछ अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए 54,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मांगी है। ये राशि ऋण चुकाने पर खर्च की जाएगी। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर से कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है।
2: मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चलने नहीं देते हैं। इधर ऑपोजिशन खड़गे जी को जितना समय दिया वो मिस यूज करना चाहते हैं। हर समय हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं और बाकी जो मेंबर लोग ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार एनओपी का नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि एथेनॉल कृषि क्षेत्र के लिए बड़ा अवसर है, बशर्ते इसकी नीति किसान केंद्रित हो और फसल का उचित मूल्य सीधे किसानों तक पहुंचे। नई दिल्ली में आज अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक में श्री चौहान ने किसान नेताओं के सुझाव सुने और भरोसा दिलाया कि सरकार एथेनॉल से जुड़े उनके सुझावों पर गंभीरता से विचार करेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी खातों और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े अवैध खातों से निपटने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और प्रसारित करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और बैंकों को शिकायत निवारण को मजबूत करने को भी कहा है। धोखाधड़ी से प्राप्त धन की वसूली में तेजी लाने और डिजिटल धोखाधड़ी के मामलों से निपटने में सुधार करने के लिए कई निर्देश भी जारी किए। भारत 2019 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को वापस लाया है। गृह मंत्रालय ने कहा कि भगोड़ों के खिलाफ कार्रवाई को मजबूत करने के लिए सरकार ने 2018 में भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम लागू किया। भारत ने भगोड़े अपराधियों से निपटने के लिए एक एकीकृत खुफिया आधारित और प्रौद्योगिकी संचालित मॉडल विकसित किया है। मौसम विभाग ने कल असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश की संभावना है। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय ने पुरुष डबल्स प्री क्वार्टर में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashwani, the news read by Reshma Tiwari. The Parliament has passed the Registration of Births and Deaths Amendment Bill 2026 with the Rajya Sabha approving it today. Lok Sabha has already passed the bill. Minister of State for Home Nityanand Rai moved the bill in the upper house, which aims to amend the Registration of Births and Deaths Act 1969. Following the passage of the bill, the Rajya Sabha was adjourned for the day. The Lok Sabha has passed the Appropriation No. 3 Bill 2026 today. Following the passage of the bill, the lower house was also adjourned for the day. Earlier, Finance Minister Nirmala Sitharaman introduced the Taxation and Other Laws Amendment Bill 2026. The lower house witnessed repeated disruptions by opposition members over several issues, including alleged police action against students during the protest over the NEET paper leak issue. The Supreme Court today directed the Reserve Bank of India to prepare and circulate a Standard Operating Procedure, SOP, for dealing with mule accounts and bank accounts linked to cyber fraud. The court also issued a series of directions to

0: Good evening and welcome to Market Mantra. I am Niharika Bhuvania with my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak.
1: नमस्कार, मार्केट मंत्र की ताज़ा अंक में आपका स्वागत है. आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताज़ा खबरों को लेकर हाजिर हैं. हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में आज आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार एके भट्टाचार्य. एके भट्टाचार्य जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है.
2: नमस्कार, धन्यवाद.
1: आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं निहारिका भुवानिया.
0: Before we move on to the stories, let's first take a look at the headlines for this evening. Benchmark domestic indices

0: snap 4-day gaining streak. Sensex drops over 200 points. Nifty settles at 24,615. Global crude oil prices decline, and Reserve Bank of India's Monetary Policy Committee to announce repo rate decision tomorrow.
1: घरेलू शेयर बाजार में पिछले चार सत्रों से जारी खरीदारी का सिलसिला आज थमा. सेंसेक्स 200 अंक से अधिक लुढ़का, निफ्टी 24,615 दर्ज हुआ. अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल के दाम नीचे आए और भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति कल रेपो दर फैसले के बारे में घोषणा करेगी.
0: And Manoj, I feel before we move forward, we should also make something very important known to our listeners, that the views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. And we further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment before taking any financial decision.
1: और आइए अब शुरू करते हैं घरेलू बाजार से खबरों का सिलसिला. घरेलू शेयर बाजार में लगातार चार दिनों से जारी बढ़त का सिलसिला आज थम गया और प्रमुख सूचकांक गिरावट के साथ बंद हुए. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स कारोबार के अंत में 210 अंक यानी 0.27% घटकर 78,429 पर बंद हुआ. उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 159 अंक यानी 0.64% नुकसान के साथ 24,615 दर्ज हुआ. विस्तारित बाजार की ओर चलें तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मिड कैप 100 इंडेक्स 0.3% घाटे में रहा, जबकि खरीदारी से स्मॉल कैप 100 इंडेक्स में 0.2% की वृद्धि देखने को मिली.
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक इक्विटी इंडेक्स एंडेड इन नेगेटिव जोन टुडे, स्नैपिंग अ 4-डे गेनिंग स्ट्रीक अहेड ऑफ आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी मीट डिसीजन. The Sensex shed 210 points or 0.27% to close at 78,429. The Nifty dropped 159 points or 0.64% to settle at 24,615. In the broader market on the National Stock Exchange, the Mid-Cap 100 Index fell by 0.3%, while the Small-Cap 100 Index gained 0.2%. Earlier, the markets opened on a mixed note following the implementation of the new closing auction session, which was introduced yesterday. The Nifty and Sensex witnessed divergent movements during the first half of the trading session. However, both indices remained under pressure in the latter half. The Nifty eased significantly in the final minute after the conclusion of the closing auction session.
1: आइए नजर डालते हैं सेंसेक्स पैक में सम्मिलित 30 कंपनियों के प्रदर्शन पर. आज 30 में से 16 कंपनियों के शेयर लाभ के साथ बंद हुए. सबसे अधिक बढ़त वाली कंपनियों में ट्रेंट और बजाज फाइनेंस के शेयर सम्मिलित रहे. इनमें 1.1% की वृद्धि देखने को मिली. भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड्स को 0.9% का और टाटा स्टील को 0.6% का मुनाफा हुआ. उधर घाटा उठाने वाली कंपनियों में प्रमुख रही हिंदुस्तान यूनिलीवर, जिसके शेयर 1.7% नीचे आकर बंद हुए. एनटीपीसी को 1.6% और एचडीएफसी बैंक के भाव 1.5% नीचे आकर बंद हुए.
0: With that, let's also take a look at the sectoral indices on the BSE. 19 out of 28 sectors ended in negative zone. Among the top underperformers, insurance plunged 2.1%. Realty as well as housing finance shed 1.2% and utilities dropped 0.6%. In contrast, capital goods gained 1%, metal rose 0.9% and industrials added 0.5%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 2,128 companies declined, 2,108 advanced and 196 remained unchanged.
1: नजर डालते हैं रुपए की स्थिति पर. अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया आज 4 पैसे कमजोर हुआ. 95.38 रुपए के स्तर पर बंद हुआ. एक ही भट्टाचार्य जी, सबसे पहले हम आज की जो गतिविधि रही है, शेयर बाजार की हलचल रही, उस पर आपकी प्रतिक्रिया समझना चाहेंगे. खासतौर से हमने पिछले कुछ सत्रों से, विशेष रूप से कल भी देखा और आज भी देखा, कि अंतिम क्षणों में बाजार में अपेक्षा के बदलाव काफी तेज रह रहा है. क्या प्रमुख कारण रह रहे हैं इसके?
2: देखिए, जो

0: मार्केट का जो जो ट्रेंड जो है वो मैं समझता हूँ कि पिछले कई दिनों में, बल्कि कई सप्ताहों से, जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट के से काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड हुआ है, मैं समझता हूँ कि जो कल का जो मार्केट जो था, उसमें जो चढ़ाव हुआ था, उसमें उसका कारण भी इंटरनेशनल था, क्योंकि ट्रम्प साहब का ऐलान में एक आशा था कि शायद ये एग्रीमेंट, सीज फायर एग्रीमेंट अब तय हो जाएगा, उसीलिए कल मार्केट चढ़ा था। पर आज की तारीख में मैं समझता हूँ कि उसमें दो प्रश्न उठ रहे हैं। एक तो है कि कितनी जल्दी ये सीज फायर एग्रीमेंट रेजोल्यूशन होगा इसका, और दूसरा है कि क्योंकि उसमें डाउट से क्रूड ऑयल प्राइस में इंक्रीज़ हुआ है, दाम बढ़ गए हैं उससे, और तीसरी बात जो है डोमेस्टिक फैक्टर एक आया है उसमें कि जो LIC जो है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, जो जिसका लिस्टिंग हुआ था 1-2 साल पहले, उसका जो गवर्नमेंट के पास अभी भी उसका 96.5% शेयर सरकार के पास है, और सरकार ने आज से चालू तय किया है कि करीबन 6.5% और जो LIC का शेयर वो मार्केट में उसका वितरण ऑफर फॉर सेल में जाएगा। उससे काफ़ी LIC के ऊपर भी प्रेशर आया, क्योंकि उनका दाम करीबन 7% नीचे आ गया, और जिस प्राइस में वो खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं शेयर्स, उस प्राइस में दाम वो आ गया है, और उसको खरीदने के लिए मैं समझता हूँ कि काफ़ी थोड़ी बहुत बिकवाली भी हुई है। सो ये विभिन्न कारणों के लिए मैं आज की तारीख में जो स्टॉक मार्केट में जो जो उतराव चढ़ाव जो हुआ है, इसका कारण ये है। और आधे घंटे में जो अंतिम आधे घंटे में जो हो रहा है, वो जैसे आपने भी कहा कि एक जो क्लोजिंग ऑक्शन सेशन है उसका, हालांकि वो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के लिए है सिर्फ, पर उसका एक प्रभाव ओवरऑल ट्रेडिंग में भी आया है।
1: So, do you identify any other triggers behind today's market movement in the benchmark indices, first of all? And second, perhaps now's the right time to simplify the closing auction session for our listeners. So, if you can briefly explain it in one or two lines for our listeners to understand that better.
0: Well, as far as what impacted the stock market today, I've already said, and it is essentially a combination of external factors and domestic factors. External factors being little uncertainty over how the West Asian crisis will get resolved. And the domestic factors, there were two essentially. One was the offer for sale being starting for LIC, which is a huge, big company, stocks. So 6.5% stocks going to be floated. That has put some pressure on the market. The second factor, domestic factor, is that tomorrow the Monetary Policy Committee will come out with its stance or rate decision. Although the market expects that there will be no rate increases, there is some sort of nervousness that has gripped the market. So these are the factors that influence the market developments today. As far as the closing auction session is concerned, this is a new device which is to ensure fair price discovery. That is one of the key objectives of the closing price auction system. Other is also to prevent market manipulation. And what used to happen earlier was that in the last 30 minutes of trading, there was a lot of fluctuations take place because the system was to arrive at the futures and option pricing on the basis of average volume-based price. So last 1 or 2 minutes, there will be a lot of orders will be placed at a certain price to influence, because the volumes will be high since it is a volume-based. Now that has been changed, and it is an auction driven, and a

0: has been kept that the price to be determined will have a minus plus minus of 3%. So you are not seeing so much of fluctuation. There is transparent price discovery, and this benefits particularly the passive index funds. So it doesn't really impact the people, investors, the retail investors who are coming into the market. It is largely aimed at addressing the day traders' concerns and convenience.
1: आपने बहुत अच्छी तरह जो ये एक नई कह लें कि प्रथा शुरू हुई है बाजार में, यह कुल मिलाकर बाजार में जो एक अनिश्चितता थी और मैनिपुलेशन हो रहा था उसको रोकने की ये कवायद है. इसमें जो नीलामी की प्रक्रिया होगी, क्लोजिंग ऑक्शन, वो क्या दर्शाती है और उसका निर्णय कौन लेगा, कौन से पक्ष उसको तय करेंगे?
0: ये जो स्टॉक मार्केट जो है उनको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को उनको तय करना पड़ेगा. उनको ये जो आधे घंटे में जो सारी जो ट्रेड्स जो आएंगी उनकी एक एवरेज बनाया जाएगा. उसमें पहले जो वॉल्यूम बेस्ड जो एक एवरेज प्राइस निकालते थे वो अब वॉल्यूम बेस्ड नहीं होगा, और दामों की जो तय होगी वो 3% ऊपर या नीचे के अंदर ही रहेगा. इसका मतलब जो पहले जो होता था कि बहुत जो मार्केट में सारा दिन एक प्राइस गया और लास्ट मिनट में वो प्राइस बदल के जी, उसको इन्फ्लुएंस करता था मार्केट को, वो होना मैं समझता हूँ कि वो कम हो जाएगा. और ये एक सुधार के तौर से, रिफॉर्म के तौर से एक काफ़ी अच्छा एक कदम है
1: जी. यहाँ पर हम ये भी समझना चाहेंगे कि बाजार में चार दिनों से हम तेजी देख रहे थे, आज भी यदि हम देखें तो सेंसेक्स पैक की 30 में से 16 कंपनियां लाभ के साथ बंद हुई हैं. यदि हम नेशनल स्टॉक को देखें तो वहां पर मिड कैप 100 इंडेक्स में गिरावट है, लेकिन स्मॉल कैप 100 इंडेक्स थोड़ा सा बढ़त के साथ गया है, बंद हुआ है. तो कुल मिलाकर ये क्या दर्शा रहा जो यानी बाजार है उसकी
0: बाजार में? सही प्रश्न किया आपने. बाजार में जो सेक्टोरल स्टोरी जो है वो ज़्यादा लगता है कि इम्पोर्टेंट है. जैसे आपने कहा कि मिड कैप में थोड़ी बहुत दुर्बलता नजर आई आज, प्लस कॉल स्मॉल कैप में
1: मजबूती
0: दिखी. आईटी में बहुत धक्का पहुंचा क्योंकि आईटी में जो एआई और जॉब्स एंड अर्निंग्स के ऊपर जो लग रहा है, और जो ब्रॉड सेक्टर्स जो हैं अगर आप देखें, क्योंकि कॉरपोरेट अर्निंग्स जो अभी तक जो आई हैं अगर आप देखें तो कॉरपोरेट अर्निंग्स उतनी खराब नहीं आ रही है. हालांकि शुरुआती दौर में बहुत अच्छी थी पर पिछले एक हफ्ते में अच्छी नहीं आ रही है. पर जो कॉरपोरेट अर्निंग्स की कैसी जो डायरेक्शन होगी उसके ऊपर भी मैं समझता हूँ कि अगले कई दिनों में इसका रुख इसके ऊपर निर्भर करेगा. और ऑफ कोर्स जो कल का जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो निर्णय होगा उसके ऊपर भी मार्केट थोड़ी बहुत इन्फ्लुएंस तो जरूर होगा
1: जी.
2: Very well, and with that, let's take a look at the next story for this evening. Bharti Airtel Limited today reported its financial results for the first quarter of the current fiscal year. The company's consolidated revenue from operations rose over 18% year-on-year to 58,539 crore rupees. The firm's consolidated net profit attributable to the owners increased over 37%. To 8,167 crore rupees on an annual basis. And with that, it's also time to take a look at our story about crude oil. Global crude oil prices dropped today. Brent crude was trading 2.6% down at $81.57 per barrel in intraday trade. West Texas Intermediate crude was trading 3.3% lower at $77.65 per barrel when reports last came in.
1: खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि वैश्विक ऊर्जा संकट के बावजूद भारत में ईंधन की कमी या आपूर्ति में कोई व्यवधान नहीं आया है. उन्होंने कहा कि भारत ने पर्याप्त मात्रा में ईंधन भंडार बनाए रखा. इस दौरान घरेलू उपयोग के लिए द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस और द्रवीकृत प्राकृतिक गैस यानी एलपीजी और एलएनजी की शत प्रतिशत उपलब्धता सुनिश्चित की गई. नई दिल्ली में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की परामर्श समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने ये जानकारी एक

0: The court also issued a series of directions to states, union territories, law enforcement agencies, and banks to strengthen grievance redressal, speed up the restoration of defrauded money, and improve the handling of digital fraud cases.
1: यहाँ पर समझना चाहेंगे कि सरकार का जो ये कदम है, इसके क्या आयाम निकलेंगे और किस रूप में फर्जीवारे को रोकने में या जो mule account हैं उनकी रोकथाम में सहायता मिलेगी?
2: देखिए ये जो कदम जो है, ये जो हमारे देश की जो जो सबसे ऊंची जो न्यायालय है Supreme Court, उनके ऑर्डर से आया है. उन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एक एक एक डायरेक्टिव दिया है जिससे कि जो म्यूल अकाउंट्स जो हैं, जैसे कि आपके अकाउंट में, जैसे जनधन के बाद बहुत लोगों के पास बहुत सारे अकाउंट आ गए, उन अकाउंट में लोग पैसे कम हैं, पैसे भी नहीं हो तभी वो अकाउंट हैं, तो उन अकाउंट की जो दुरुपयोगिता बढ़ जाती है. बहुत लोग उन म्यूल अकाउंट्स को, जो जो उनके अंदर कोई पैसे नहीं है पर उसका एक अकाउंट होल्डर है और वो अकाउंट है, उसका दुरुपयोग करते हैं और जो फर्जी काम, आपके किसी से चोरी करना या आप जो ड्रग्स की जो पैसे होते हैं, टेररिज्म के पैसे होते हैं, वो आपके जो अकाउंट होल्डर हैं उनको वो जानते भी शायद नहीं होंगे, पर उनके अकाउंट से का इस्तेमाल करके वो बैंकिंग सिस्टम से उसका फाइनेंसिंग होता है.
1: जी,
2: तो
1: जी.
2: सुप्रीम कोर्ट ने ये तय किया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के से कड़ी शब्दों में ये कहा है कि उसको एक नया सिस्टम ऐसा चालू करना है जिससे कि जो ये म्यूल अकाउंट सिस्टम जो है इसके ऊपर एक बहुत बड़ा एक रोकथाम हो सके और उसके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीडियर बनाने का एक डायरेक्टिव दिया गया है.
1: जी.
0: And our next story links to the mention of RBI's monetary policy meeting, which begins tomorrow. The meeting of Reserve Bank's Monetary Policy Committee began yesterday. My apologies. RBI Governor Sanjay Malhotra is slated to announce the policy statement tomorrow. We have a report on the same.
3: In the last Monetary Policy Committee meeting, the Reserve Bank of India kept the key repo rate unchanged at 5.25% for the third time in a row. At the same time, RBI revised its GDP growth forecast for the current financial year downward by 30 basis points, BPS, to 6.6% and raised its CPI inflation projection by 50 BPS to 5.1%, highlighting growing concerns over inflation risk. RBI's primary mandate is to maintain price stability while keeping in mind the objective of growth. In the current context, India's retail inflation rose to 4.38% year-on-year in June, slightly above RBI's target of 4%, but still within its mandated tolerance band of 2% to 6%. With geopolitical tensions persisting and crude oil prices remaining volatile, the RBI's policy decision will be closely watched. Ayushi Singh for Market Mantra.
1: क्या आसार हैं कल की घोषणा में? क्या बाजार की अपेक्षाएं और
2: अपेक्षाएं हैं? ये हैं कि जो जो रेट जो है, जिसे हम रेपो रेट कहते हैं, जिस रेट से बैंकों को जो कॉस्ट ऑफ मनी होती है उसमें कोई परिवर्तन शायद ना हो, पर इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मार्केट जो देखेगी और या समझने की कोशिश करेगी कि आरबीआई की स्टेटमेंट के अंदर इकोनॉमी की जो ग्रोथ की जो आउटलुक जो है या इन्फ्लेशन की जो फोरकास्टिंग है उसमें कोई बड़ा परिवर्तन आया है कि नहीं. जैसे आयुषी सिंह जी ने कहा कि पहले अभी तक जो इन्फ्लेशन जो फोरकास्ट जो है वो अभी भी टॉलरेंस बैंड के अंदर है.
1: जी, जी.
2: क्या इस वक्त इस कल की जो मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में आरबीआई अपना इन्फ्लेशन का आउटलुक में ऐसा परिवर्तन करता है जिससे कि वो बैंड के ऊपर जाए और ग्रोथ का जो असेसमेंट है रेट के हिसाब से मैं समझता हूँ का ज़्यादा कोई अपेक्षा ही नहीं है, पर आरबीआई की असेसमेंट इकोनॉमी में इन्फ्लेशन में कैसी होगी उसके ऊपर बहुत उनकी हमारी सबकी आंखें
1: लगी
2: रहेगी.
1: आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं वैश्विक बाजारों की ओर, जहाँ दक्षिण कोरिया का कोस्पी आज 1.6% लाभ के साथ बंद हुआ. जापान के निक्की 225 सूचकांक में 0.3% की वृद्धि हुई है.
0: एंड लेट्स टेक अ लुक एट गोल्ड एंड सिल्वर. इन द इंडियन बुलियन मार्केट 24 कैरेट गोल्ड वाज ट्रेडिंग 0.8% अप एट 1,44,170 रुपीज पर 10 ग्राम्स, व्हाइल सिल्वर वाज आल्सो ट्रेडिंग 2.1% हायर at 2,21,000.

0: 740 rupees per kilogram a short while ago.
1: आइए श्रोताओं आपको हम लिए चले मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में भी सोने और चांदी के मूल्यों में आज समाचार तैयार किए जाने तक तेजी दिख रही थी. अगस्त अनुबंध वाले सोने का मूल्य 1% बढ़त के साथ 1,42,551 रुपए प्रति 10 ग्राम पर समाचार तैयार किए जाने तक कारोबार कर रहा था, जबकि सितंबर अनुबंध यानी सितंबर में आपूर्ति वाली चांदी भी 2% बढ़त के साथ 2,21,448 रुपए प्रति किलो के स्तर पर कारोबार कर रही थी. बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से एके भट्टाचार्य जी हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे.
2: नमस्कार. थैंक यू. धन्यवाद.
0: थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे मिस्टर भट्टाचार्य. एंड बिफोर वी क्लोज

0: Thank you. Dhanyavaad.
1: Thank you so much for joining us today, Mr. Bhattacharya. And before we close, a reminder of the headlines. Benchmark domestic indices snap 4-day gaining streak. Sensex drops over 200 points. Nifty settles at 24,615. Global crude oil prices decline. And Reserve Bank of India's Monetary Policy Committee to announce repo rate decision tomorrow. With that, it's a wrap on today's Market Mantra. We'll see you in the next one. Take care.
2: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं गीत मेरे मनमीत। पहले जो गीत आपके लिए लेकर आई हूं उनके बारे में बता दूं, सबसे पहला गीत आप सुनेंगे लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज में, शंकर जयकिशन का संगीत है, फिल्म का नाम है चोरी चोरी। इसके बाद आप सुनेंगे दिल्ली का ठग फिल्म से गीत, किशोर कुमार और आशा जी की आवाज है, संगीत होगा रवि का। और साथ ही वक्त भी मिला लें, 11:41 और 20 सेकंड हो चुके हैं। यह है गीत मेरे मनमीत, संग है आपके अर्पणा।

0: एनसीआरईपीई से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
1: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
2: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत। आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
0: एनसीआरईपीई से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।

शैलेंद्र का लिखा गीत मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में, शंकर जयकिशन का संगीतबद्ध। ये गीत अनाड़ी फिल्म से अभी आपने सुना। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। अगला गीत जो है उसे संगीतबद्ध किया है सलिल चौधरी ने, गीत लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने और आवाज होगी लता मंगेशकर तलत महमूद की। फिल्म का नाम है छाया। इस गीत के बाद एफएम गोल्ड पर आप सुनेंगे समाचार। अर्पना को दे इजाजत, यूं ही हंसते मुस्कुराते रहिएगा। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे राज्यसभा ने कल स्वीकृति दी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाने और जन्म तथा मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है।
1: इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु के पंजीकरण में होने वाली देरी को रोकने और लोगों को समय पर पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित करना है। नए प्रावधान के तहत अगर किसी जन्म या मृत्यु की जानकारी एक साल बाद लेकिन दो साल के भीतर दी जाती है तो उसका पंजीकरण जिला मजिस्ट्रेट, उपमंडल मजिस्ट्रेट या DM द्वारा अधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति मिलने के बाद ही होगा। अनुमति देने से पहले अधिकारी को यह जांच करनी होगी कि उस व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी सही है या नहीं। यदि जन्म या मृत्यु की सूचना दो वर्ष से अधिक समय के बाद जाती है तो उसका पंजीकरण केवल प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही किया जाएगा। जन्म और मृत्यु का पंजीकरण कराना सभी के लिए अनिवार्य है और इसके बाद मिलने वाला प्रमाण पत्र किसी व्यक्ति की कानूनी पहचान का महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: लोकसभा ने कल विनियोग विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसमें 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई थी। इस राशि को पूरा करने के लिए देश की संचित निधि से धन के विनियोग को अधिकृत करने का प्रावधान है। सरकार ने कुछ अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए 54,000 करोड़ रूपये से अधिक की राशि मांगी है। यह राशि ऋण चुकाने पर खर्च की जाएगी। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर

0: विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर से कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है।
1: मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चलने नहीं देते हैं। इधर ऑपोजिशन करके जिसको जितना समय दिया वो मिसयूज करना चाहते हैं हर समय। हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं और बाकी जो मेंबर लोग ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार एलओपी का नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं।
0: अमरीका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि ईरान के साथ समझौता होने पर एक से दो दिन में होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोला जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस मार्ग से जहाजों की आवाजाही की स्वतंत्रता बनाए रखना जरूरी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि खाड़ी में फंसे सैकड़ों जहाजों के निकलने के बाद कीमतों में और कमी आ सकती है। इसका असर ऊर्जा के साथ साथ उर्वरक, पेट्रोलियम उत्पादों और औद्योगिक गैसों पर भी पड़ेगा। अमरीकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान का परमाणु निरस्त्रीकरण अमरीका का अंतिम लक्ष्य है, जबकि होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलना तत्काल प्राथमिकता है। इस बीच कतर ने पुष्टि की है कि अमरीका और ईरान के बीच मध्यस्थता के प्रयास जारी हैं। दोनों पक्षों के बीच संभावित समझौते के मसौदे पर बातचीत चल रही है ताकि क्षेत्र में तनाव को और बढ़ने से रोका जा सके। राष्ट्रपति भवन स्थित अमृत उद्यान की ग्रीष्मकालीन वार्षिक प्रदर्शनी आम लोगों के लिए इस महीने की 16 तारीख से खुल जाएगी। लोग 15 सितंबर तक अमृत उद्यान का भ्रमण कर सकेंगे। इस दौरान उद्यान सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा। अंतिम प्रवेश शाम 5 बजे होगा। रखरखाव के कारण हर सोमवार उद्यान बंद रहेगा। प्रवेश निःशुल्क होगा। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश की संभावना है। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय ने डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Reshma Tiwari. The Parliament has passed the Registration of Births and Deaths Amendment Bill 2026, with the Rajya Sabha approving it yesterday. The Lok Sabha has already passed the bill. Minister of State for Home Nityanand Rai moved the bill in the Upper House, which aims to amend the Registration of Births and Deaths Act 1969. Following the passage of the bill, the Rajya Sabha was adjourned for the day. The Lok Sabha passed the Appropriation No. 3 Bill 2026 yesterday. Following the passage of the bill, the lower house was also adjourned for the day. The Supreme Court has directed the Reserve Bank of India to prepare and circulate a standard operating procedure for dealing with mule accounts and bank accounts linked to cyber fraud. The Apex Court yesterday also issued a series of directions to states, union territories, law enforcement agencies and banks to strengthen grievance redressal, speed up the restoration of defrauded money and improve the handling of digital fraud cases. India has condemned the attack on the Indian-flagged commercial vessel MSV Faiz Noor Aulia that sank in the Red Sea off the coast of Yemen yesterday. The Ministry of External Affairs said all 13 Indian nationals have been rescued. It said the Indian Embassy in Riyadh is closely monitoring the situation and proactively coordinating with the Yemeni authorities for the safety and security of the crew. The ministry thanked the Yemeni authorities for their support. It added that the continuing incidents of attacks on commercial shipping in the region are deeply worrisome. Union Minister of State for Health and Family Welfare Pratap Rao Jadhav has informed that the Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana has significantly contributed in reducing out-of-pocket expenditure In a written report,

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। प्रोग्राम है निशिगंधा और मैं हूं आपके साथ सुरभि। जिंदगी की सबसे खूबसूरत बात यह होती है कि इसमें हर किसी के हिस्से में कोई ना कोई कहानी जरूर आती है, कभी मुस्कुराहटों से भरी हुई तो कभी इंतजार से सजी हुई, तो कभी किसी की याद में चुपचाप सिमटी हुई। जी हाँ, मोहब्बत भी कुछ ऐसी ही होती है, कभी अल्फाज में बयां हो जाती है तो कभी खामोशियों में कुछ कह जाती है, और यही छोटे छोटे एहसास हमारी ज़िंदगी को ख़ास बना देते हैं। और इन्हीं एहसासों को, अनकही बातों को, दिल छू लेने वाले लम्हों को जब सुरों में और गीतों में पिरोया जाता है बड़ी खूबसूरती के साथ, और हम सजा लाते हैं गीतों के माध्यम से।

कभी कभी प्यार को आवाज़ की ज़रूरत नहीं होती, कई रिश्ते बिना पुकारे भी दिल तक पहुंच ही जाते हैं। शिकायतें होती हैं, हल्की सी नाराज़गी भी होती है, लेकिन अगर मोहब्बत सच्ची हो तो एक खामोशी के बाद भी हज़ार अल्फाज खामोशी में ही बयां हो जाते हैं। और इन्हीं मीठे एहसास और प्यार भरे नोकझोंक को बड़े खूबसूरत अंदाज में बयां करता हुआ अगला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं किशोर कुमार की आवाज़ में।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

निशिगंधा आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ, और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। कहते हैं कि कुछ रिश्ते बनते नहीं, वो पहले से ही लिखे होते हैं, और ये बात महसूस होती है।

दो अलग अलग राहें, दो अलग अलग सपने, और फिर एक ऐसा मोड़ जहां दोनों का सफर एक हो जाए। शायद यही प्यार की सबसे खूबसूरत बात है, जहां मैं और तुम का फासला मिटकर हम हो जाता है।

कभी कभी जिंदगी में यूं भी होता है कि चलते चलते राहें अचानक अलग हो जाती हैं, फासले बढ़ जाते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि सच्चा प्यार दूरियों से कभी नहीं मिटता। कुछ रिश्ते बिछड़ कर भी दिल में वैसे ही बसते हैं जैसे पहली मुलाकात की कोई मीठी याद। जुदाई का दर्द, याद की कसक और मोहब्बत की गहराई को बेहद खूबसूरती से एक दिल ही समझ सकता है।

0: रिश्तों में कभी प्यार होता है तो कभी रूठना मनाना भी। कई बार नाराजगी बस जबान तक रहती है, लेकिन दिल चाहता है कोई रोक ले, कोई मना ले। मोहब्बत की यही मीठी अदा रिश्तों को और भी ज्यादा खास बना देती है।
1: तो हम चलते हैं,

इसी गीत के साथ निशिगंधा का सफर यहीं तक। 1:10 पर गीत सुहाने में होगी हमारी और आपकी एक बार फिर से मुलाकात। और अब सुरभि को दीजिए इजाजत, कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे राज्यसभा ने कल स्वीकृति दी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाने और जन्म तथा मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है। लोकसभा ने कल विनियोग विधेयक 2026 पारित कर दिया। इसमें 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई थी। इस राशि को पूरा करने के लिए देश की संचित निधि से धन के विनियोग को अधिकृत करने का प्रावधान है। सरकार ने कुछ अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए 54,000 करोड़ रूपये से अधिक की राशि मांगी है। ये राशि ऋण चुकाने पर खर्च की जाएगी। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर से कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं।
1: मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चलने नहीं देते। इस तरफ ऑपोजिशन खड़गे जी को जितना समय दिया वो मिसयूज करना चाहते हैं। हर समय हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं और बाकी जो मेंबर लोग ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार एनओपी का नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं।
0: भारत अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के तहत आज से भोपाल में तीसरी ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा। ये बैठक 6 अगस्त तक चलेगी। संस्कृति मंत्रालय ने बताया कि इसमें ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे और संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के मुद्दों पर चर्चा करेंगे।

0: करेंगे। अमरीका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि ईरान के साथ समझौता होने पर एक से दो दिन में होर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोला जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस मार्ग से जहाजों की आवाजाही की स्वतंत्रता बनाए रखना जरूरी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि खाड़ी में फंसे सैकड़ों जहाजों के निकलने के बाद कीमतों में और कमी आ सकती है। इसका असर ऊर्जा के साथ साथ उर्वरक, पेट्रोलियम उत्पादों और औद्योगिक गैसों पर भी पड़ेगा। भारत ने लाल सागर में यमन के तट के पास भारतीय ध्वज वाले वाणिज्यिक पोत एमएसवी फैज नूर औलैया पर हुए हमले की निंदा की है। हमले के बाद पोत डूब गया। विदेश मंत्रालय ने बताया कि पोत पर सवार सभी 13 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। मंत्रालय ने कहा कि रियाद स्थित भारतीय दूतावास स्थिति पर नजर बनाए हुए है और चालक दल की सुरक्षा के लिए यमनी अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है। राष्ट्रपति भवन स्थित अमृत उद्यान की ग्रीष्मकालीन वार्षिक प्रदर्शनी आम लोगों के लिए इस महीने की 16 तारीख से खुल जाएगी। लोग 15 सितंबर तक अमृत उद्यान का भ्रमण कर सकेंगे। इस दौरान उद्यान सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा। अंतिम प्रवेश शाम 5 बजे होगा। रखरखाव के कारण हर सोमवार उद्यान बंद रहेगा। प्रवेश निःशुल्क होगा। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश की संभावना है। केरल, माहे, राजस्थान, तमिलनाडु, पुडुचेरी और उत्तर प्रदेश में भी अगले दो से तीन दिन में ऐसी ही स्थिति रहेगी। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कल राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाजी, जूडो और पैरा एथलेटिक्स में ऐतिहासिक प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया। नई दिल्ली में एक समारोह में स्वर्ण पदक विजेताओं को 30 लाख, रजत पदक विजेताओं को 20 लाख और कांस्य पदक विजेताओं को 10 लाख रुपए पुरस्कार प्रदान किए गए। उन्होंने कहा कि 36,000 करोड़ रुपए की संशोधित खेलो इंडिया योजना से भविष्य में खेलों के विकास में निरंतर निवेश सुनिश्चित होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। The Parliament has passed the Registration of Births and Deaths Amendment Bill 2026 with the Rajya Sabha approving it yesterday. The Lok Sabha has already passed the bill. Minister of State for Home Nityanand Rai moved the bill in the upper house. This bill amends the Registration of Births and Deaths Act 1969 to prevent delays and encourage timely registration of births and deaths. If a birth or death is reported to the registrar between 1 and 2 years late, it requires the approval of a district, subdivisional or executive magistrate for registration. The Lok Sabha also passed the Appropriation No. 3 Bill 2026 yesterday. With this, the lower house was also adjourned for the day. The Supreme Court has directed the central government to develop a pilot project linking fuel sales to valid third-party motor insurance, proposing that uninsured vehicles be denied fuel. Justices Sanjay Karol and Prashant Kumar Mishra noted that nearly 56% of vehicles on Indian roads are uninsured, calling the situation shocking. The court directed the Insurance Regulatory and Development Authority of India and the Centre to pilot automatic number plate recognition, that is ANPR-based insurance verification, to identify uninsured vehicles and improve compliance with the Motor Vehicles Act. The court also asked the centre to launch pilot projects on selected national highway corridors to replace conventional toll plazas with automatic vehicle detection systems to reduce congestion and improve traffic flow. India has condemned the attack on the Indian-flagged commercial vessel MSV Faiz Noor Olia, which sank in the Red Sea off the coast of Yemen yesterday. The Ministry of External Affairs said all 13 Indian nationals have been rescued. It stated that the Indian embassy in Riyadh is closely monitoring the situation and proactively coordinating with Yemeni authorities to ensure the crew's safety and security. The ministry thanked the Yemeni authorities for their support. Expressing concern over the ongoing attacks on commercial shipping in the region, the ministry emphasized that such targeting must end. Election Commission has revised the schedule of the ongoing Special Intensive Revision, that is SIR, of the

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz। प्रोग्राम है गीत सुहाने और मैं हूं आपके साथ सुरभि। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बहुत खूब कहा है किसी ने कि मेरे साथ तुम भी दुआ करो, मेरे साथ तुम भी दुआ करो, यूं किसी के हक में बुरा ना हो। मेरे साथ तुम भी दुआ करो, यूं किसी के हक में बुरा ना हो, कहीं और ना हो ये हादसा, कोई रास्ते में जुदा ना हो। मेरे घर से रात की सेज तक, मेरे घर से रात की सेज तक वो एक आंसू की लकीर है, जरा बढ़ के चांद से पूछना, वो इसी तरफ से गया ना हो, कहीं और ना हो ये हादसा, कोई रास्ते में जुदा ना हो। मेरे साथ तुम भी दुआ करो, यूं किसी के हक में बुरा ना हो। वो फरिश्ते आप ही ढूंढिए कहानियों की किताब में, जो बुरा कहें ना बुरा सुने,

गीत सुहाने प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ, और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। 1:12

22 मिनट और हो गए हैं पूरे 34 सेकंड। बहुत खूब लिखा है किसी ने कि मोहब्बत में दिखावे की दोस्ती ना मिला, मोहब्बतों में दिखावे की दोस्ती ना मिला, अगर गले नहीं मिलता तो हाथ भी ना मिला। तमाम रिश्तों को मैं घर पे छोड़ आया था, फिर इसके बाद मुझे कोई अजनबी ना मिला। खुदा की इतनी बड़ी कायनात में मैंने बस एक शख्स को मांगा, मुझे वही ना मिला। मोहब्बतों में दिखावे की दोस्ती ना मिला, खुदा से इतनी बड़ी कायनात में मैंने बस एक शख्स को मांगा, मुझे वही ना मिला।

गीत सुहाने आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ। बहुत खूब कहा है किसी ने कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, ये दुनिया खूबसूरत हो गई है। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, ये दुनिया खूबसूरत हो गई है। खुदा से रोज तुमको मांगता हूँ, मेरी चाहत इबादत हो गई है। वो चेहरा चांद हैं, आँखें सितारे, ज़मीं फूलों की जन्नत हो गई है। ये दुनिया खूबसूरत हो गई है, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। बहुत दिन से तुम्हें देखा नहीं है, बहुत दिन से तुम्हें देखा नहीं है, चले भी आओ कि मुद्दत हो गई है। खुदा से रोज़ तुमको मांगता हूँ, मेरी चाहत इबादत हो गई है। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, ये दुनिया खूबसूरत हो गई है।

कभी तो आसमां से चांद उतरे जाम हो जाए, तुम्हारे नाम की खूबसूरत शाम हो जाए, हमारा दिल सवेरे का सुनहरा जाम हो जाए, चरागों की तरह आंखें जलें जब शाम हो जाए।

गीत सुहाने आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ, और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। होठों पे मोहब्बत के फसाने नहीं आते, साहिल पे समंदर के खजाने नहीं आते, पलकें भी चमक उठती हैं सोते में हमारी, आंखों को अभी ख्वाब छुपाने नहीं आते।

और इसी गीत के साथ गीत सुहाने का सफ़र यहीं तक। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 2:10 पर रात सुरमई में। और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेज़ी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे राज्यसभा ने कल स्वीकृति दी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाने और जन्म तथा मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है। लोकसभा ने कल विनियोग विधेयक 2026 पारित कर दिया। इसमें 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई थी। इस राशि को पूरा करने के लिए देश की संचित निधि से धन के विनियोग को अधिकृत करने का प्रावधान है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण कल दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर से कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं।
1: मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चलने नहीं देते हैं। इधर ऑपोजिशन करके जो जितना समय दिया वो मिसयूज करना चाहते हैं। हर समय हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं और बाकी जो मेंबर लोग ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार एलओपी का नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं।
0: भारत अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के तहत आज से भोपाल में तीसरी ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा। ये बैठक 6 अगस्त तक चलेगी। संस्कृति मंत्रालय ने बताया कि इसमें ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे और संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। 2 दिन की इस बैठक में 3 प्रमुख विषयों पर विचार विमर्श होगा। अमरीका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि ईरान के साथ समझौता होने पर 1 से 2 दिन में होर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोला जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस मार्ग से जहाजों की आवाजाही की स्वतंत्रता बनाए रखना जरूरी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि खाड़ी में फंसे सैकड़ों जहाजों के निकलने के बाद कीमतों में और कमी आ सकती है। इसका असर ऊर्जा के साथ साथ उर्वरक, पेट्रोलियम उत्पादों और औद्योगिक गैसों पर भी पड़ेगा। भारत ने लाल सागर में यमन के तट के पास भारतीय ध्वज वाले वाणिज्यिक पोत एमएसवी फैज नूर औलैया पर हुए हमले की निंदा की है। हमले के बाद पोत डूब गया। विदेश

रात सुरमई लेकर एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपके साथ, आपके बीच सुरभि। आप सभी को मेरा नमस्कार। और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz। तो चलिए आपको सुनवाने जा रहे हैं सबसे पहला गीत, फिल्म है मुद्दत और आवाज़ मोहम्मद अजीज़ और आशा भोसले की है।

कहते हैं कि ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें इंसान को खुशियाँ देती हैं, लेकिन दिल को सुकून अक्सर मोहब्बत से ही मिलता है। जब किसी अपने का साथ हो तो हर लम्हा ख़ास लगता है, और जब वही साथ ना हो तो हर खुशी भी अधूरी महसूस लगती है।

कभी कभी ये दिल बिना किसी आहट के मचलने लगता है। किसी की एक मुस्कान, एक नज़र या एक छोटी सी मुलाकात अचानक उसका हर ख्याल उसी के इर्द गिर्द समटने लगता है। शायद ये वही पल होता है जब एहसास होता है कि ये दिल किसी की मोहब्बत में अब गिरफ्तार हो गया है और डूबने लगा है।

0: और चलिए रात सुरमई में आपको डॉन फिल्म का एक गीत सुनवाते हैं, लेकिन उससे पहले क्या खूब कहा किसी ने कि सौ खुलूस बातों में सब करम ख्यालों में, सौ खुलूस बातों में सब करम ख्यालों में, बस ज़रा वफा कम है तेरे शहर वालों में। रात तेरी याद ने दिल को इस तरह छेड़ा जैसे कोई चुटकी ले नर्म नर्म गालों में। मेरी आँख के तारे अब ना देख पाओगे, रात के मुसाफिर थे खो गए उजालों में। बस ज़रा वफा कम है तेरे शहर वालों में, सौ खुलूस बातों में सब करम ख्यालों में।
1: अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबाए। आहा, अरे

सुन ली जो खुदा ने वो दुआ तुम तो नहीं हो, दरवाजे पे दस्तक की सदा तुम तो नहीं हो। महसूस किया तुमको तो गीली हुई पलकें, भीगे हुए मौसम की अदा तुम तो नहीं हो। इन अजनबी राहों में नहीं कोई भी मेरा, किसने मुझे यूं अपना कहा तुम तो नहीं हो।

और इसी गीत के साथ रात सुरमई का ये सफर यहीं तक। आपकी हमारी मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। अब सुरभि को दीजिए इजाजत और आप थोड़ी देर में सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे राज्यसभा ने कल स्वीकृति दी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाने और जन्म तथा मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है। लोकसभा ने कल विनियोग विधेयक 2026 पारित कर दिया। इसमें 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई थी। इस राशि को पूरा करने के लिए देश की संचित निधि से धन के विनियोग को अधिकृत करने का प्रावधान है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण कल दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर से कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है।
1: मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चलने नहीं देते हैं। इधर ऑपोजिशन करके जो जितना समय दिया वो मिसयूज करना चाहते हैं। हर समय हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं। और बाकी जो मेंबर लोग ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार एलओपी का नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं।
0: झारखंड लोक सेवा आयोग और अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित तौर पर पेपर लीक होने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों ने राज्य के बाहर के सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के एक स्वतंत्र पैनल द्वारा जांच की मांग की और कहा कि उन्हें अब चल रही अपराध जांच विभाग सीआईडी की जांच पर भरोसा नहीं है। प्रदर्शनकारी 29 जुलाई से रांची में अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि राज्य सरकार जांच को सीआईडी को सौंपकर मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी बड़ी पैमाने पर अनियमितताओं और वित्तीय लेनदेन का आरोप लगाते हुए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई जांच की मांग दोहराई। भारत अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के तहत आज से भोपाल में तीसरी ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा। ये बैठक 6 अगस्त तक चलेगी। संस्कृति मंत्रालय ने बताया कि इसमें ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे और संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। 2 दिन की इस बैठक में 3 प्रमुख विषयों पर विचार विमर्श होगा। इनमें रचनात्मक अर्थव्यवस्था, सांस्कृतिक एवं रचनात्मक उद्योग, कॉपीराइट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण और सांस्कृतिक संपत्तियों की वापसी तथा संस्कृति जलवायु और सतत विकास शामिल हैं। विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 में 36 सदस्यीय भारतीय टीम हिस्सा लेगी। ये प्रतियोगिता आज से 9 अगस्त तक अमेरिका के ओरेगन के यूजीन हेवर्ड फील्ड में आयोजित होगी। भारतीय दल में 23 पुरुष और 13 महिला खिलाड़ी शामिल हैं। इस बार विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 147 देशों के 1800 से अधिक खिलाड़ी

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ। 3:11 हो चुके हैं, लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम हमराही।

कार्यक्रम हमराही में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, जिसमें मैं हूं आज आपके साथ आपका दोस्त अर्चित। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ।

मुमकिन नहीं है कि सब कुछ मिल जाए इस एक जिंदगी में, मुमकिन नहीं है कि सब कुछ मिल जाए इस एक जिंदगी में, जितनी चाहते हैं उसमें तो कई जिंदगियां लगेंगी, पर चाहत यही है और आगे भी रहेगी, पर चाहत यही है और आगे भी रहेगी कि पूरी हों सभी चाहते इसी एक जिंदगी में। 3:19 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम हमराही मेरे यानी अर्चित के साथ।

लता मंगेशकर जी की आवाज में कभी रात दिन हम दूर थे। लता रहते हैं उदास बिना किसी बात के, रहते हैं उदास बिना किसी बात के, उदासी का यह मंजर मेरी समझ में नहीं आया। उलझे हैं खुद ही बेकार की उलझनों में, उलझे हैं खुद ही बेकार की उलझनों में, वरना किसी ने मुझे कहाँ सताया। 3:27 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम हमराही।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी

सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

बने रहने दीजिए कुछ अरमान अधूरे भी इस जिंदगी में, बने रहने दीजिए कुछ अरमान अधूरे भी इस जिंदगी में, सभी अरमान पूरे यहाँ कौन ही कर पाता है। हो गए जो पूरे सारे अरमान, हो गए जो पूरे सारे अरमान, तो फिर जिंदगी जीने का मजा कहाँ आता है। 3:40 हो चुके हैं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमराही, मेरे यानी अर्चित के साथ।

कुछ ऊपर कुछ नीचे भी चलती है ये जिंदगी है, कभी एक सी नहीं चलती है। उतार चढ़ाव तो लगे ही रहते हैं इस जिंदगी में, आराम आराम से ही सही, बस ये जिंदगी के साथ चलते रहो, तब जाकर ये जिंदगी संवरती है।

चाहते हो खुद के लिए सम्मान, चाहते हो खुद के लिए सम्मान तो कुछ सम्मान दूसरों का भी करना सीख लो। अकड़े रहते हो हर जगह, अकड़े रहते हो हर जगह, कभी कभी कहीं झुकना भी सीख लो। 3:52 हो चुके हैं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमराही।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे राज्यसभा ने कल स्वीकृति दी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाने और जन्म तथा मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है। लोकसभा ने कल विनियोग विधेयक 2026 पारित कर दिया। इसमें 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई थी। इस राशि को पूरा करने के लिए देश की संचित निधि से धन के विनियोग को अधिकृत करने का प्रावधान है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण कल दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर से कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं।
1: मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चलने नहीं देते हैं। इधर ऑपोजिशन खड़गे जी को जितना समय दिया वो मिसयूज करना चाहते हैं। हर समय हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं और बाकी जो मेंबर लोग ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार एलओपी का नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं।
0: झारखंड लोक सेवा आयोग और अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित तौर पर पेपर लीक होने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों ने राज्य के बाहर के सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के एक स्वतंत्र पैनल द्वारा जांच की मांग की और कहा कि उन्हें अब चल रही अपराध जांच विभाग सीआईडी की जांच पर भरोसा नहीं है। प्रदर्शनकारी 29 जुलाई से रांची में अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि राज्य सरकार जांच को सीआईडी को सौंपकर मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी बड़े पैमाने पर अनियमितताओं और वित्तीय लेनदेन का आरोप लगाते हुए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई जांच की मांग दोहराई। भारत अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के तहत आज से भोपाल में तीसरी ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा। ये बैठक 6 अगस्त तक चलेगी। संस्कृति मंत्रालय ने बताया कि इसमें ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे और संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति भवन स्थित अमृत उद्यान की ग्रीष्मकालीन वार्षिक प्रदर्शनी आम लोगों के लिए इस महीने की 16 तारीख से खुल जाएगी। लोग 15 सितंबर तक अमृत उद्यान का भ्रमण कर सकेंगे। इस दौरान उद्यान सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा। अंतिम प्रवेश शाम 5 बजे होगा। रखरखाव के कारण हर सोमवार उद्यान बंद रहेगा। प्रवेश निःशुल्क होगा। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश की संभावना है। केरल, माहे, राजस्थान, तमिलनाडु, पुदुचेरी और उत्तर प्रदेश में भी अगले 2 से 3 दिन में ऐसी ही स्थिति रहेगी। विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 में 36 सदस्यीय भारतीय टीम हिस्सा लेगी। ये प्रतियोगिता 5 से 9 अगस्त तक अमेरिका के ओरेगन के यूजीन हेवर्ड फील्ड में आयोजित होगी। भारतीय दल में 23 पुरुष और 13 महिला खिलाड़ी शामिल हैं।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ। 4:10 हो चुके हैं, लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम अरुणिमा।

कार्यक्रम अरुणिमा में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त अर्चित। आइए शुरू करते हैं मोहम्मद रफी जी की आवाज में एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ इस प्रोग्राम की शुरुआत।

दिन रात उलझनों के बारे में सोचोगे तो फिर उलझते ही चले जाओगे। दिन रात उलझनों के बारे में सोचोगे तो फिर उलझते ही चले जाओगे। सब कुछ छोड़कर बैठो जरा सुकून से कुछ पल। सब कुछ छोड़कर बैठो जरा सुकून से कुछ पल। धीरे धीरे देखना खुद को सुलझा हुआ पा।

उड़ना भले ही सीख लो आसमान में सबसे ऊपर, उड़ना भले ही सीख लो आसमान में सबसे ऊपर, पर नीचे अपनी ज़मीन का भी ख्याल रखना। आना ही पड़ेगा एक दिन ज़मीन पर तुमको नीचे, आना ही पड़ेगा एक दिन ज़मीन पर तुमको नीचे, सारी ज़िंदगी कोई हवा में नहीं रहता। 4:25 हो चुके हैं, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ, सुनते रहिए कार्यक्रम अरुणिमा मेरे यानी अर्चित के साथ।

मोहम्मद रफी जी की आवाज में ना जा कहीं अब ना जा। रात तो हर रोज एक जैसी ही होती है, रात तो हर रोज एक जैसी ही होती है, इंतजार तो हमें उस सुबह का रहता है जिसके साथ आज दिन कुछ नया होगा। 4:32 हो चुके हैं, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। सुनते रहिए कार्यक्रम अरुणिमा।

तुझे देखा, तुझे चाहा, तुझे पूजा मैंने, बस इतनी खता है मेरी, और खता क्या, तुझे देखा।

हासिल तो बहुत कुछ हुआ है इस जिंदगी से हमें, हासिल तो बहुत कुछ हुआ है इस जिंदगी से हमें, पर हम रोना उसी का रोते हैं जो मिला नहीं। और निकल कर देखा जब घर से बाहर, और निकल कर देखा जब घर से बाहर, तब पता चला जो हमें मिला है वो बहुतों को आज तक मिला ही नहीं। 4:39 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम अरुणिमा।

बनी रहने दीजिए कुछ ख्वाहिशें अधूरी ही सही, बनी रहने दीजिए कुछ ख्वाहिशें अधूरी ही सही, सारी पूरी हो जाएं ये ज़रूरी तो नहीं। सुकून ए ज़िंदगी पर ही ध्यान दीजिए सारा, सुकून ए ज़िंदगी पर ही ध्यान दीजिए सारा, क्योंकि ख्वाहिशों का कोई अंत नहीं।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत इस वर्ष ब्रिक्स संगठन के अध्यक्ष के रूप में ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की तीसरी बैठक की मेजबानी

0: करेगा। ये बैठक आज और कल भोपाल में होगी। संस्कृति मंत्रालय ने बताया कि बैठक में सदस्य देशों के प्रतिनिधि सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाने और ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक से पहले प्रमुख मुद्दों पर सहमति बनाने पर विचार करेंगे। मंत्रालय ने बताया कि इस बैठक से ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत सांस्कृतिक साझेदारी मजबूत करने तथा संस्कृति के माध्यम से समावेशी विकास को बढ़ावा देने की भारत की प्रतिबद्धता व्यक्त होती है। ब्रिक्स देशों के शिक्षा मंत्रियों की 13वीं और वरिष्ठ अधिकारियों की 3री बैठक आज से उड़ीसा के भुवनेश्वर में होगी। ये बैठक 7 अगस्त तक चलेगी। शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि इन बैठकों में शिक्षा मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधि विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। मुख्य रूप से आरंभिक बाल्यावस्था में समुचित देखभाल और शिक्षा, कौशल विकास और सहयोग बढ़ाना तथा अनुसंधान सहयोग, नवाचार और स्टार्टअप उद्यमों को बढ़ावा देने पर विचार होगा। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ब्रिक्स देशों के शिक्षा मंत्रियों की 13वीं बैठक में भाग लेंगे। संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे राज्यसभा ने कल स्वीकृति दी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाने और जन्म तथा मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है। लोकसभा ने कल विनियोग विधेयक 2026 पारित कर दिया। इसमें 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई थी। इस राशि को पूरा करने के लिए देश की संचित निधि से धन के विनियोग को अधिकृत करने का प्रावधान है। इसके बाद संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दों पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण कल दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है।
1: मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चलने नहीं देते हैं। इधर ऑपोजिशन करके जो जितना समय दिया वो मिसयूज करना चाहते हैं। हर समय हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं और बाकी जो मेंबर लोग ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार एनओपी का नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं।
0: झारखंड लोक सेवा आयोग और अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित तौर पर पेपर लीक होने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों ने राज्य के बाहर के सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि उन्हें अपराध जांच विभाग सीआईडी की जांच पर भरोसा नहीं है। प्रदर्शनकारी 29 जुलाई से रांची में अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं। प्रदर्शनकारी भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी बड़े पैमाने पर अनियमितताओं और वित्तीय लेनदेन का आरोप लगाते हुए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई जांच की मांग दोहराई। राष्ट्रपति भवन स्थित अमृत उद्यान की ग्रीष्मकालीन वार्षिक प्रदर्शनी आम लोगों के लिए इस महीने की 16 तारीख से खुल जाएगी। लोग 15 सितंबर तक अमृत उद्यान का भ्रमण कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य परिवहन निगम की बसों में 60 वर्ष और इससे अधिक आयु की महिलाओं को निशुल्क यात्रा की सुविधा देगी। इसके लिए बजट में समुचित प्रावधान किए गए हैं। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में कृष्ण प्रसाद गारागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय ने डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेगी। पीवी सिंधु और उन्नति हुड्डा इस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले रहे हैं। ये प्रतियोगिता 9 अगस्त तक खेली जाएगी। विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 में 36 सदस्यीय भारतीय टीम हिस्सा लेगी। ये प्रतियोगिता 5 से 9 अगस्त तक अमेरिका के ओरेगन के यूजीन हेवर्ड फील्ड में आयोजित होगी। भारतीय दल में 23 पुरुष और 13 महिला खिलाड़ी शामिल है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। 5:10 हो चुके हैं, लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम भोर सुहानी। करते रहिए कोशिशें हजारों, एक दिन में कुछ भी हासिल नहीं होता। लगातार प्रयास करते रहने से एक ना एक दिन जरूर है हासिल होता। पर हासिल हो जाए कुछ तो उस पर घमंड मत करिए, पर हासिल हो कुछ तो उस पर घमंड मत करिए, क्योंकि ये वो घमंड ही है जो हमसे सब कुछ है वापस ले लेता। 5:11 हो चुके हैं, कार्यक्रम भोर सुहानी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और फिर से मैं ही हूं आपके साथ, आपका दोस्त अर्चित। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम।

कुछ गलत काम करने से लाख गुना बेहतर है कुछ भी ना करना। कुछ गलत काम करने से लाख गुना बेहतर है कुछ भी ना करना, क्योंकि गलती से की गई गलतियां तो सुधारी जा सकती हैं, पर जानकर किए गए गलत कामों को सुधारना अक्सर मुश्किल होता है। 5:17 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम भोर सुहानी।

खान आपके शहर में आकर एक खास गाना बनाया है जो इस प्रोग्राम को रोककर आपके सामने पेश करता हूं।

रास्ते कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, विश्वास अपने पैरों पर ही रखें। जाना खुद ही पड़ेगा आपको चलकर, जाना खुद ही पड़ेगा आपको चलकर, ये रास्ते आपको कहीं नहीं पहुंचाते। 5:25 हो चुके हैं, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। सुनते रहिए कार्यक्रम भोर सुहानी मेरे यानी अर्चित के साथ।